मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार बुधवार दिनांक 8 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं से आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथा

में नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का आलेख है प्रेरणा। संकलन एवं वाचन स्वर हैं गोपेश पांडे के।

पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह देती है। प्रेरणा के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर सकते। यह हमें अपने डर और संदेहों को दूर करने में मदद करती है और हमें अपने साधनों को पूरा करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करती है। प्रेरणा एक अमूल्य धरोहर है जो हर व्यक्ति के जीवन को उज्जवल बना सकती है। हमें इसे पहचानने, पोषित करने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं। जब तक जीवन में प्रेरणा बनी रहती है, तब तक हमारी सोच, हमारा प्रयास और सफलता का सफर जारी रहता है। प्रेरणा का संबंध केवल हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारे मनोविज्ञान से भी है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक हार्मोन जैसे डोपामाइन का स्राव करता है, जिससे हमें उत्साह और ऊर्जा मिलती है। प्रेरणा हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संतुलित रखती है। प्रेरणा के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि हमारे परिवार, मित्र, शिक्षक, यहाँ तक कि हमारे अपने अनुभव भी। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता आ रहा है, तो यह भी हमें प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेरणा के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला, प्रेरणा के आंतरिक स्रोत। आत्मविश्वास प्रेरणा का एक प्रमुख आंतरिक स्रोत है। अपने आप पर विश्वास करना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना ही आत्मविश्वास है। प्रेरणा का दूसरा आंतरिक स्रोत होता है लक्ष्य। आत्म मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन करना और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, यह भी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है। आत्म निर्देशन, अपने आप को निर्देशित करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक योजना बनाना आत्मनिर्देशन के अंतर्गत आने वाला प्रमुख विषय है। यदि हम बातें करें प्रेरणा के बाहरी स्रोत की, तो परिवार और मित्र, शिक्षक और मार्गदर्शक, पुस्तकें और लेख, यहाँ तक कि वीडियो और फिल्में भी हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और स्टीव जॉब्स, इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को देखकर हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी हमें प्रेरणा देती है। साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पहाड़, नदियाँ, जंगल, झरने हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। कभी कभी प्रेरणा का गलत दिशा में भी उपयोग हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को लालच, ईर्ष्या या अहंकार से प्रेरणा मिलती है, तो यह उसे नकारात्मक कार्यों की ओर धकेल सकता है। इसलिए प्रेरणा को हमेशा सकारात्मक दिशा में ले जाना आवश्यक है। प्रेरणा के महत्व की बात करें तो लक्ष्यों की प्राप्ति इसका मुख्य महत्व है। प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। प्रेरणा हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करती है। प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संघर्षों का सामना करने में मदद करती है। प्रेरणा हमें सफलता की ओर

0: करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। इस प्रकार प्रेरणा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है और हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। प्रेरणा का प्रभाव तब अधिक दिखाई देता है जब इसे समय प्रबंधन के साथ जोड़ा जाए। प्रेरित व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है और प्राथमिकताओं को समझकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रेरणा विषय पर कार्यक्रम विचार बिंदु, संकलन एवं वाचन स्वर थे गोपेश पांडे के। मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस भाग 118 का गायन पाठ। गायन स्वर हैं श्रीकांत परगांवकर, रविंद्र साठे और साथी के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है, अरहर की खेती कैसे करें।
1: खरीफ दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। चना के बाद अरहर दूसरी मुख्य दाल वाली फसल है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसकी खेती की जाती है। इस फसल के उच्चहन एवं भर्री भूमियों के अलावा धान के खेतों के मेड़ों में भी की जाती है। उन्नत तकनीक के माध्यम से किसान भाई अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फसल को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए गर्म नर्म जलवायु तथा पौधों पर फूल आने से लेकर फली और दाने बनते समय तक शुष्क मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। इस फसल के लिए समुचित जल निकास वाली हल्की से लेकर भारी मिट्टियां खेती के लिए उपयुक्त रहती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में कन्हार भूमि में इस फसल की काश्त की जाती है। अरहर को धान खेतों की मेड़ों में भी सफलतापूर्वक उगाई जाती है। अरहर फसल के लिए भूमि की तैयारी मानसून प्रारंभ होते ही एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई एवं देशी हल या ट्रैक्टर द्वारा 2 बार जुताई करें, पाटा लगाकर समतल करना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिला दें। तत्पश्चात अंतिम जुताई के समय बुआई के पूर्व क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलावें, जिससे दीमक आदि कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। बुआई के पहले जल निकास के लिए खेत में चारों ओर नालियां बना दें। जमीन के प्रकार, बुआई का समय तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उन्नतशील किस्म का चयन करें। उपास 120, यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए संवेदनशील मध्यम ऊंचाई होती है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आशा, इस किस्म की अवधि 160 से 180 दिन होती है। उकठा एवं बांझ पन के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों हेतु उपयुक्त है। इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसी तरह नंबर 148, यह किस्म 160 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए सहनशील है एवं बस्तर तथा सरगुजा के क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति, यह किस्म 130 से 140 दिन में पक जाती है। उकठा रोग के लिए निरोधी एवं बोनी किस्म है। यह पेड़ी फसल हेतु उपयुक्त है। उपज क्षमता 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लक्ष्मी, यह किस्म 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों हेतु उपयुक्त किस्म है। उपज क्षमता की बात करें तो यह 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अरहर की बुआई मानसून के ऊपर निर्भर करता है। साधारणतः बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक रहता है। देर होने की स्थिति में इस फसल की बुआई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा बीज के आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सामान्यतः मध्यम आकार और उच्च गुणवत्ता वाला बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कतार से बोने के लिए लगता है। अरहर के साथ सह फसली खेतों में अरहर की बीज दर शुद्ध फसल के बराबर रखनी चाहिए। बुआई के पूर्व बीज को कवकनाशी दवा बावेस्टीन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के बाद राइजोबियम तथा PSB कल्चर की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। अरहर के बीज कतार

0: आरों में 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर बोना चाहिए। मध्यम एवं देर अवधि वाली किस्मों के लिए कतारों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बुआई हल के पीछे पंक्तियों में या सीड ड्रिल से करें। उर्वरकों की उचित मात्रा का निर्धारण मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना लाभदायक होगा। अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 60 किलोग्राम स्फुर एवं 20 से 30 किलोग्राम पोटास बुआई के समय कतारों में डालना चाहिए। उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व खेत में देना लाभदायक होता है। खरीफ की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। अरहर के 20 से 60 दिन की अवस्था बहुत ही क्रांतिक होती है। खरपतवार से 20 से 40% तक का उत्पादन की कमी पाई गई है। अरहर में 2 बार निंदाई गुड़ाई 25 से 30 दिन पर और 45 से 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों अरहर की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, प्रातः 7 बजे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल प्रसारित किया जाएगा। 7:15 पर सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। 7:30 पर स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत किया जाएगा। 8:30 पर शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर वंदन प्रसारित किया जाएगा। 9 बजे रायपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुन सकेंगे। 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गूंजन लेकर हम आएंगे। 10 बजे तापमान सूचना, कार्यक्रम विवरण तथा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए तराने प्रस्तुत किया जाएगा। 11:05 पर आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे। 12:00 NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग अनुप्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन हम लेकर आएंगे। 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। 1:30 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत होगा कार्यक्रम घर गोसाइन। 1:40 पर आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज प्रसारित किया जाएगा। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा प्रस्तुत किया जाएगा। 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुन सकेंगे। 5:05 पर फिल्मी और गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या प्रस्तुत किया जाएगा। 5:30 पर युवा सोच, कहानी पाठ और फिल्म संगीत से सजा युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:05 पर सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। 6:20 पर लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली प्रस्तुत किया जाएगा। 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी लेकर हम आएंगे। 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे। 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत होगा कार्यक्रम चौपाल। 8:00 सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे। 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। 9:30 पर दिल्ली से प्रसारित सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: सुन सकेंगे। 10:30 पर हम फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन लेकर आएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधान सचिवस्य डॉक्टर पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां 15+ मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देश वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूट आउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं चत्वारि त्रीणि इत्यांका तारालेन पराजित्य चतुःपञ्चाशदधिक ऊनविंशति शततमात् वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए भोजपुरी दादर गीत रामलल्लू पांडे और साथी के स्वर में।

तन कि पिया घरे रही तन जवन जवन कही तन तवन करती हम तैयार।

इसी गीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है सईद शाहिदी की लिखी हुई और तलत अजीज़ की आवाज़ में ये गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब पेश है जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

श्रोताओं, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। श्रोताओं, बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 11वीं के रिक्त सीटों पर लेटरल एंट्री से प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। अंबिकापुर। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर घंघरी के कक्षा 11वीं में रिक्त सीटों की पूर्ति लेटरल एंट्री के माध्यम से किया जाना है। जीव विज्ञान गणित में कुल 10 सीट, जिसमें बालक 5 एवं कन्या 5 रिक्त सीट है। रिक्त सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है। प्राप्त आवेदन पत्रों के पात्र पात्र सूची का प्रकाशन 17 जुलाई 2026 से किया जाएगा। प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा तिथि 20 जुलाई 2026 प्रातः 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर घंघरी में आयोजित होगी। परीक्षा परिणाम 23 जुलाई 2026 को घोषित होंगे। आवेदक आवेदन का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा के वेबसाइट www.sarguja.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन 15 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 17 जुलाई 2026 को पात्र पात्र की सूची वेबसाइट www.sarguja.nic.in पर देखा जा सकता है। 17 जुलाई 2026 को ये आप जानकारी उक्त वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। 18 जुलाई एवं 19 जुलाई 2026 को प्रवेश पत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। 23 जुलाई 2026 को परीक्षा परिणाम मेरिट सूची वेबसाइट www.sarguja.nic.in में प्रदर्शित किया जाएगा। अगले समाचार से पहले श्रोताओं, सुनिए फिल्म खामोशी से हेमंत कुमार का गाया और गुलजार का लिखा ये गीत।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में अब बढ़ते हैं हम अगली समाचार की ओर। लाइवलीहुड कॉलेज में कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन 8 जुलाई से। अंबिकापुर, प्राचार्य सह नोडल अधिकारी जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज ने बताया कि लाइवलीहुड कॉलेज अंबिकापुर में वर्ष 2026-27 हेतु पंजीकृत कोर्स असिस्टेंट मेशन सहायक राजमिस्त्री

एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन यानी सहायक बिजली मिस्त्री में प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। पंजीकृत कोर्स में प्रशिक्षण लेने हेतु इच्छुक हितग्राही 8 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच लाइवलीहुड कॉलेज में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जिसमें पंजीकृत हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण उपरांत सर्टिफिकेट व आवश्यक किट प्रदान किया जाएगा। अन्य जानकारी के लिए लाइवलीहुड कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शासकीय उच्च मूल्य दुकानों के संचालन हेतु 22 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित। अंबिकापुर खाद्य अधिकारी ने बताया कि इंदिरा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित नगर निगम अंबिकापुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 39100106 के संचालन तथा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 7 नगर निगम अंबिकापुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य

खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित नगर निगम अंबिकापुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3910010068 के संचालन तथा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 7 नगर निगम अंबिकापुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3910010047 के संचालन हेतु असमर्थता व्यक्त की गई है। उन्होंने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के नवीन आबंटन के लिए संचालन हेतु इच्छुक पात्र एजेंसी से दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित है। वे अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में संपूर्ण विवरण एवं दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति के साथ अंतिम तिथि 22 जुलाई 2000 तक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा कर सकते हैं। समय सीमा के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। श्रोताओं, अब बढ़ते हम अपने अगले गीत की ओर। यह गीत है फिल्म गाइड से। स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत निर्देशन है SD बर्मन का।

श्रोताओं, अब चलते हैं अब अगले समाचार की ओर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 9 जुलाई तक कर सकते हैं दावा आपत्ति। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा केंद्र प्रयास आवासीय विद्यालय घंघरी अंबिकापुर में किया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम 6 जुलाई 2026 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.sarguja.nic.in पर देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम में आपत्ति होने पर परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम से संबंधित दावा आपत्ति 9 जुलाई 2026 सायं 3 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग अंबिकापुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले गीत की ओर। फिल्म प्रेम पुजारी से लता मंगेशकर की आवाज़ में, नीरज के बोल और एस डी बर्मन के संगीत के साथ।

कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ज़िले में बिजली व्यवस्था होगी और सशक्त। देवाडाण में नवनिर्मित उपकेंद्र की 11 केवी लाइन अब दौड़ेगी बिजली। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना योजना के तहत ज़िले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कार्यपालन अभियंता मनेन्द्रगढ़ द्वारा जानकारी दी गई है कि ग्राम देवाडाण में नवनिर्मित 33/11 केवी उपकेंद्र से संबंधित 11 केवी विद्युत लाइन को आज विद्युत प्रवाह प्रारंभ किया जाएगा। यह 11 केवी लाइन ग्राम कोचका, देवाडाण, सलका और कटकोना से होकर गुजरेगी। विद्युत प्रवाह शुरू होने के बाद इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय होगी, जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाओं का लाभ मिलेगा। कार्यपालन अभियंता ने क्षेत्र में नागरिकों से अपील की है कि विद्युत लाइन चालू होने के बाद सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से पालन करें। भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइन विद्युत

तारों एवं स्टेवायर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। ऐसा करना जानमाल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। विद्युत विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा विद्युत उपयोग एवं सतर्कता ही दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही सभी नागरिकों से ऊर्जा संरक्षण को अपनाते हुए स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा की बचत करने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार के, बोल हैं गुलशन बावरा के और संगीत निर्देशन है RD बर्मन का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। अब सुने समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में

0: वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
2: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
3: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी

0: तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109

0: 9SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जाँच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताज़ा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साक का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृहमंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay.

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम वीर वंदन के साथ मैं आपका रेडियो साथी प्रत्युष। वीर वंदन में हम स्मरण करते हैं उन अमर वीरों का जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनके जीवन, उनके साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए आज के इस अंक में हम स्मरण कर रहे हैं कारगिल युद्ध के महानायक भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स के वीर अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार पांडे को। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस और अद्वितीय नेतृत्व का परिचय देते हुए भारतीय सीमा को घुसपैठियों से मुक्त कराया था। उनके इस असाधारण पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज कार्यक्रम वीर वंदन में सुनेंगे उनके जीवन और शौर्य की गौरव गाथा। उनकी वीरता की स्मृति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। लीजिए सुनिए फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडियन का यह गीत। स्वर है अरिजीत सिंह का, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है आरको ने।

सीतापुर जिले के रूढ़ा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सैनिक स्कूल में हुई, जहां उनके मन में भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का संकल्प दृढ़ हुआ। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान जब एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि वे सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया था कि उनका उद्देश्य परमवीर चक्र प्राप्त करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे भारतीय सेना की प्रसिद्ध रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में शामिल हुए। एक युवा सैन्य अधिकारी के रूप में उनका चयन उनके उस संकल्प की ओर पहला कदम था, जिसे उन्होंने आगे चलकर अपने अद्भुत शौर्य से सच कर दिखाया। आइए कैप्टन मनोज कुमार पांडे की स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं राष्ट्रभक्ति की भावना से युक्त यह गीत। लीजिए सुनिए फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो का यह गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं AR रहमान।

साल 1999, मई का महीना। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने भारतीय नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था। इस घुसपैठ का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का संपर्क काटना और सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने वाले मार्ग को बाधित करना था। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी मिली तो देश की अखंडता की रक्षा के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बटालियन को बटालिक सेक्टर में तैनात किया गया था। यह पूरा क्षेत्र अत्यंत दुर्गम, खड़ी चढ़ाई वाला और जमा देने वाली ठंड से प्रभावित था। दुश्मन ऊंचाई पर बंकर बनाकर सुरक्षित बैठा था, जहां से वे भारतीय सैनिकों की हर गतिविधि पर सीधी नज़र रख सकते थे। ऐसी कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा और बटालिक सेक्टर को दुश्मन के चंगुल से मुक्त कराने की जिम्मेदारी संभाली। देश के वीर जवानों के इस हौसले को समर्पित आइए सुनते हैं यह अगला देशभक्ति गीत। सुनिए फिल्म रोजा का यह गीत। इसे अपनी आवाज़ दी है हरिहरन ने। इस रचना के लेखक हैं पीके मिश्रा और इसका संगीत तैयार किया है AR रहमान ने।

बटालिक सेक्टर में भारतीय सेना को आगे बढ़ने के लिए जूबर टॉप नामक महत्वपूर्ण पहाड़ी पर कब्जा करना अनिवार्य था। यह स्थान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से दुश्मन भारतीय चौकियों पर लगातार भारी गोलीबारी कर रहा था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को जूबर टॉप को खाली कराने का आदेश दिया गया। जून 1999 की शुरुआत में उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए इस कठिन मिशन की शुरुआत की। रात के घने अंधेरे में सीधी खड़ी चट्टानों और अत्यंत संकरे रास्तों से होते हुए वे आगे बढ़े। दुश्मन की ओर से लगातार भारी मशीन गन और मोर्टार से हमले हो रहे थे। इन तमाम बाधाओं के बावजूद कैप्टन मनोज ने अत्यंत सूझबूझ और सामरिक कौशल का परिचय दिया। उन्होंने अपनी टुकड़ी को सुरक्षित आगे बढ़ाया और दुश्मन की चौकियों पर धावा बोलकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस प्रारंभिक सफलता ने भारतीय सेना के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया। जूबर टॉप की सफलता के बाद कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनकी टुकड़ी को बटालिक सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन चौकी खालूबार पर कब्जा करने का ऐतिहासिक कार्य सौंपा गया। यह रात 2 और 3 जुलाई 1999 की घटना है। कैप्टन मनोज की प्लाटून को दुश्मन के ठिकानों की पहचान करने और उन पर हमला करने का आदेश मिला था। जैसे ही उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी, ऊंचाई पर बंकरों में छिपे दुश्मनों ने उन पर चारों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। रोशनी की कमी और भारी गोलीबारी के कारण भारतीय सैनिक खुले मैदान में फंस गए थे। स्थिति अत्यंत नाजुक थी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर बंकरों को जल्दी नष्ट नहीं किया गया तो पूरी टुकड़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बिना समय गंवाए खुद आगे बढ़कर दुश्मन के बंकरों पर सीधा हमला करने का साहसिक निर्णय किया। वीर सैनिकों की इसी साहस को रेखांकित करता, आइए सुनते हैं यह अगला प्रेरणादायक गीत। कार्यक्रम में प्रस्तुत है फिल्म स्वदेश का यह गीत, जिसके गायक हैं ए आर रहमान। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कैप्टन मनोज कुमार पांडे अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए पूरी निर्भीकता से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी खुकरी निकाली और अत्यंत वीरता से दुश्मन के पहले बंकर पर हमला कर वहां मौजूद दो घुसपैठियों को ढेर कर दिया। इस दौरान उनके कंधे और पैर में गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने अपनी चोटों की परवाह नहीं की। अत्यधिक घायल होने के बावजूद वे रेंगते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े और उसे भी नष्ट कर दिया। उनके इस अभूतपूर्व साहस को देखते हुए उनके गोरखा सैनिकों में नया जोश भर गया और वे जय महाकाली आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। कैप्टन मनोज यहीं नहीं रुके, उन्होंने तीसरे बंकर पर भी हमला बोला और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब वे चौथी बंकर की ओर बढ़ रहे थे तभी दुश्मन की एक गोली सीधे उनके माथे पर लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उनका अंतिम आदेश अपने सैनिकों के लिए था कि वे किसी भी हाल में पीछे न हटें और बंकरों को पूरी तरह नष्ट कर दें।

कैप्टन मनोज कुमार पांडे के अंतिम आदेश और उनके अनुकरणीय नेतृत्व से प्रेरित होकर उनके सैनिकों ने अत्यंत आक्रामक हमला किया और खालूबार चौकी से दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर दिया। भारतीय सेना ने खालूबार पर तिरंगा फहराकर जीत हासिल की। इस भीषण युद्ध में कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। भारत सरकार ने उनके इस असाधारण साहस, अदम्य वीरता, नेतृत्व क्षमता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से विभूषित किया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका देश प्रेम और कर्तव्य परायणता आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती रहेगी। आइए कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में सुनते हैं आज का यह अंतिम देशभक्तिपूर्ण फिल्मी गीत। आनंद लीजिए फिल्म शहीद के इस गीत का, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस रचना के रचनाकार हैं प्रेम धवन और इसे संगीतबद्ध भी प्रेम धवन ने किया है।

0: और इसी देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वीर वंदन यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है। अब कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।
1: आज सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण मेरी समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में लीजिए सुनिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों का अगला भाग।
1: लोगों ने तिलक महाराज को जो पदवी, जो उच्च स्थान दिया था, वह राजाओं के दिए खिताबों से लाख गुना कीमती था। देश ने आज ये बात सिद्ध कर दिखाई है। यह कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी कि सारी बंबई लोकमान्य को पहुंचाने के लिए उलट पड़ी थी। उनके आखिरी दिनों में जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोगों के उस अगाध प्रेम का वर्णन करना असंभव है। फ्रांस में कहावत है कि राजा मर गए, राजा चिरंजीवी रहे। ये विचार इंग्लैंड आदि सारे देशों में प्रचलित है। जब राजा की मृत्यु होती है, तब ये कहावत कही जाती है। उसका भावार्थ यह है कि राजा तो मरता ही नहीं, राजतंत्र एक मिनट भी बंद नहीं रहता। उसी प्रकार तिलक महाराज भी मर नहीं सकते, न मरे ही। बंबई की जनता ने यह दिखला दिया कि वह जीते हैं और बहुत समय तक जिएंगे। उनके सगे संबंधियों को भले ही दुख हुआ हो, उन्होंने भले ही आंखों से मोती टपकाए हों, परंतु दूसरे लोग तो उत्सव मनाने के लिए ही आए थे। बाजे और भजन लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि लोकमान्य मरे नहीं हैं। लोकमान्य तिलक महाराज की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठता था। उस समय लोग इस बात को भूल गए थे कि हम तो तिलक महाराज के देह के दया कर्म के लिए आए हैं। शनिवार की रात को जब मैंने उनके स्वर्गवास की खबर सुनी, तब मेरा चित्त व्याकुल हो रहा था, पर जयघोष सुनकर मेरी बेचैनी जाती रही। मेरी भी यही धारणा हुई कि तिलक महाराज जीवित हैं। उनका क्षणभंगुर देह छूट गया है, पर उनकी अमर आत्मा तो लाखों लोगों के हृदय में विराजमान है। इस जमाने में किसी भी लोकनायक को ऐसी मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। दादा भाई गए, फिरोज शाह गए, गोखले भी चले गए, सबके साथ हजारों लोग शमशान तक गए थे, पर तिलक महाराज ने तो हद कर दी। उनके पीछे तो सारी दुनिया गई। रविवार को बंबई बावली हो गई थी। ये कैसा चमत्कार! संसार में चमत्कार नाम की कोई वस्तु ही नहीं, अथवा यों कहें कि जगत स्वयं ही एक चमत्कृति है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता, इस सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं हो सकता। लोकमान्य का हिंदुस्तान पर असीम प्रेम था, इसी कारण लोक प्रेम की मर्यादा नहीं रह गई थी। स्वराज्य के मंत्र का जितना जाप उन्होंने किया है, उतना दूसरे किसी ने नहीं किया। जिस समय दूसरे लोग ये मानते थे कि हाँ, अब भारत स्वराज्य के योग्य होगा, उस समय लोकमान्य सच्चे दिल से मानते थे कि भारत आज ही तैयार है। लोकमान्य की इस धारणा ने लोगों के मन को हर लिया था। ऐसा मानकर वह बैठे नहीं रहे, बल्कि जिंदगी भर उसके अनुसार काम किया। उससे जनता में नवीन चैतन्य, नया जोश पैदा हुआ।

उन्होंने स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अधीरता का स्वाद लोगों को चखाया और ज्यों ज्यों जनता को उसका स्वाद मालूम होने लगा त्यों त्यों वह उनकी तरफ खींचती गई। उन पर अनेक तरह की आफतें आई, तरह तरह के कष्ट उन्हें सहने पड़े, तो भी उन्होंने इस मंत्र का अनुष्ठान नहीं छोड़ा। इस तरह वह कठिन परीक्षाओं में भी पास हुए। इससे जनता ने उन्हें अपने हृदय का सम्राट बनाया और उनका वचन उनके लिए कानून की तरह मान्य हो गया। देह के नष्ट हो जाने से ऐसा महान जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि देहपात के बाद से ही तो वह शुरू होता है। जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उसकी सच्ची पूजा तो उसके सद्गुणों का अनुकरण करना ही है। लोकमान्य अत्यंत सादगी के साथ रहते थे। उनके स्मरण के लिए हमें भी अपना जीवन सादा बनाना चाहिए। हमें उस सीमा तक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए जिस तरह के लिए हमारा मन गवाही देता हो। अपने निश्चित कार्य को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वे विचारशील थे, हमें भी विचार करके ही बोलना और काम करना चाहिए। वे विद्वान थे, अपनी मातृभाषा और संस्कृत पर उनका खूब प्रभुत्व था, हमें भी उनकी तरह विद्वान होने का निश्चय करना चाहिए। व्यवहार में विदेशी भाषा का त्याग करके मातृभाषा का काफ़ी ज्ञान प्राप्त करना और उसी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करके अपने धर्म ग्रंथों में छिपे धर्म रहस्यों को प्रकट करना चाहिए। वे स्वदेशी के प्रेमी थे, हमें भी स्वदेशी का अर्थ समझकर उसका व्यवहार करना चाहिए। उनके हृदय में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। हम भी अपने हृदय में ऐसा प्रेम उदय करें और दिन प्रतिदिन देश सेवा में अधिकाधिक तत्पर हों। इसी रीति से उनकी पूजा हो सकती है। जिससे इतना ना हो सके, वह उनकी यादगार के लिए जितना हो सके धन दें और वह स्वराज्य के कार्य में खर्च किया जाए। लोकमान्य वर्तमान राज्य मंडल के कट्टर शत्रु थे, पर इससे ये ना समझना चाहिए कि वे अंग्रेजों से द्वेष करते थे। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भूल करते हैं। उन्हीं के श्रीमुख से मैंने कई बार अंग्रेजों की प्रशंसा सुनी है। वे अंग्रेजी राज्य के संबंध को भी अनिष्ट नहीं मानते थे। वे तो सिर्फ अपने को अंग्रेजों के बराबर मनवाना चाहते थे। किसी का गुलाम बनकर रहना उन्हें पसंद न था। ऐसे प्रौढ़ देशभक्त के स्वर्गवास का उत्सव हम मना रहे हैं। ऐसे पुरुष का देह चाहे रहे या न रहे, पर देश की सेवा तो किया ही करता है, देश को आगे बढ़ाया ही करता है। जिसने अपने कार्य की रूपरेखा बना रखी हो, जिसने उनके अनुसार 45 वर्षों तक काम किया हो, जिसने अपनी देह को देश सेवा के ही अर्पण कर दिया हो, उसके देह का नाश भले ही हो जाए,

पर उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अतएव लोकमान्य तिलक मरकर भी हमें जीवन का मंत्र सिखा गए हैं।

श्रोता, इन दिनों आप सुन रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। ये विचार श्रृंखला आगामी अंकों में भी जारी रहेगी।

0: गांधी चर्चा इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर की थी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। यह है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन और स्टूडियो में मैं आपके साथ हूं प्रत्युष। आज की इस सभा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज गुंजन में हम बात करने जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन, इसके कारणों, परिणामों और इसके कुछ उपायों पर।

श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि धरती, नदियाँ, जंगल और पर्वत हमसे संवाद कर सकते। शायद वे कहते कि हमने विकास की दौड़ में प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। प्रकृति हमें यह याद दिलाती है, वह हमारी शत्रु नहीं बल्कि जीवनदायिनी है। यदि हम उसके साथ संतुलित व्यवहार करेंगे तो वह हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगी। प्रकृति का यह काल्पनिक संदेश वास्तव में हमारे लिए चेतावनी भी है और प्रेरणा भी। श्रोताओं, बातों को अल्प विराम देते हुए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर। पहला गीत है फिल्म कयामत से कयामत तक का, अलका याग्निक की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को, फिल्म थी कयामत से कयामत तक। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारी रसोई तक पहुंच चुका है। अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ती गर्मी के कारण फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। इससे सब्जियों, फलों, अनाज और दालों की कीमतें बढ़ती हैं तथा किसानों की आय पर भी असर पड़ता है। पोषण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि कई फसलें बदलते मौसम में पहले जैसी नहीं उग पाती। इसलिए जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिकों का विषय नहीं, बल्कि हर परिवार की चिंता है। भोजन की सुरक्षा और भविष्य दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। बातें जारी रहेंगी। उससे पहले सुनिए फिल्म तेजाब का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश, अलका और शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म तेजाब का ये गीत।
1: आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। श्रोताओं, सुनने में 1 डिग्री तापमान की वृद्धि बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन पृथ्वी के लिए इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है।

तापमान में मामूली वृद्धि से हिमनद तेजी से पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है और वर्षा का स्वरूप बदल जाता है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ता है तो कहीं अचानक बाढ़ आती है। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं और अनेक प्रजातियां संकट में आ जाती हैं। कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक बार बार चेतावनी देते हैं कि तापमान में छोटी वृद्धि भी भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बातें होंगी जलवायु परिवर्तन के कारण गांव से शहर तक बदलती जिंदगी पर। पर उससे पहले सुनिए फिल्म आशिकी का यह गीत कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

श्रोताओं, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पहले गर्मी इतनी तीव्र नहीं होती थी, वर्षा समय पर होती थी और सर्दियां भी अधिक ठंडी होती थीं। आज मौसम का स्वरूप तेज़ी से बदलता दिखाई देता है। कहीं अचानक भारी वर्षा होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। बढ़ते तापमान और ग्रीन हाउस गैसों के कारण मौसम के प्राकृतिक चक्र में बदलाव आ रहा है। यह केवल एक अनुभव नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी प्रमाणित वास्तविकता है। इसलिए बदलते मौसम को समझना और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना समय की आवश्यकता है। इस गंभीर विषय पर आगे और चर्चा होगी। उससे पहले लीजिए सुनिए फिल्म फूल और कांटे से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर का लिखा और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन के साथ ये गीत।

श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि वर्ष 2050 की एक सुबह है। गर्मी इतनी अधिक कि लोग सुबह के समय ही अपने अधिकांश कार्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सीमित हो चुका है और वर्षा का स्वरूप इतना अनिश्चित हो गया है कि खेती पहले जैसी लाभदायक नहीं रही। कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र का बढ़ता स्तर लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित एक संभावित परिदृश्य है। यदि आज हम ऊर्जा की बचत, वृक्षारोपण, स्वच्छ तकनीकों के उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास करें तो ऐसा भविष्य टाला जा सकता है। आगे चर्चा होगी जलवायु परिवर्तन और हमारी थाली के बीच, पर उससे पहले सुनिए फिल्म रोजा का ये गीत। SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में, बोल हैं PK मिश्रा के और संगीत निर्देशन AR रहमान का है।

श्रोताओं, हमारी थाली में परोसा जाने वाला भोजन प्रकृति के संतुलन पर निर्भर करता है। समय पर वर्षा, उपयुक्त तापमान और स्वस्थ मिट्टी अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन इन सभी कारकों को प्रभावित कर रहा है। कहीं अधिक वर्षा से फसलें नष्ट हो जाती हैं तो कहीं सूखे के कारण उत्पादन घट जाता है। इससे अनाज, दाल, फल और सब्जियों की उपलब्धता तथा कीमत दोनों प्रभावित होती है। पोषण संबंधी चुनौतियाँ भी बढ़ सकती हैं। इसलिए जब हम भोजन की बर्बादी रोकते हैं, स्थानीय और मौसमी उत्पादों को अपनाते हैं तथा किसानों के प्रयासों का सम्मान करते हैं, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु संरक्षण में भी योगदान देते हैं। चर्चा यूं ही जारी रहेगी। उससे पहले सुनिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन का है।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम की नियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार

रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर जेपी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति की गई है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डूमर तराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 338 पदों पर भर्ती की जाएगी और आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष अंकितानंद आज रायपुर में मानसून के दौरान राज्य की औद्योगिक इकाइयों में संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब समय है मौसम संबंधी सूचना का।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अंबिकापुर शहर का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस, साथ ही 0.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। तापमान सूचना समाप्त।

और अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। 11:05 पर आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे। दोपहर 12:00 NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग अनुप्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन लेकर आएंगे। 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। 1:10 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत होगा कार्यक्रम घर गोसाई। 1:40 पर आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज प्रसारित किया जाएगा। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा प्रस्तुत किया जाएगा। 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन सकेंगे। 5:05 पर फिल्मी और गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या प्रस्तुत किया जाएगा। 5:30 पर युवा सोच कहानी पाठ और फिल्म संगीत से सजा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:05 पर सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। 6:20 पर लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली प्रस्तुत किया जाएगा। 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी लेकर हम आएंगे आपके सामने। 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा सुन सकेंगे। 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत होगा कार्यक्रम चौपाल। 8:00 सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश सुन सकेंगे। 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। 9:30 पर दिल्ली से प्रसारित सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है आप सुन सकेंगे। 10:00 ईमेल द्वारा प्राप्त आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर हम फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन लेकर आएंगे।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 होने को हैं। प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए फिल्म कबीर सिंह का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

कार्यक्रम नए तराने में अब पेश है फिल्म सड़क टू का ये गीत। आवाज़ें हैं जुबिन नौटियाल, अरिजीत और के की। इस गीत को लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत निर्देशन जीत गांगुली का है।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: यदि राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अब ये तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम नए तराने में अब सुनिए फिल्म जबरिया जोड़ी का ये गीत, विशाल मिश्रा और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में। गीत को लिखा है राज शेखर ने और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

अब कार्यक्रम नैतराने में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ये गीत। इस गीत को गाया है पापोन ने, इसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत निर्देशन मिथुन का है।

कार्यक्रम नए तराने में अगला गीत पेश है फिल्म बागी 3 से। इस गीत को गाया है सचेत टंडन ने, इसके बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने और संगीत निर्देशन है सचेत परंपरा का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 मीटर पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम नए तराने में अगला गीत है फिल्म फितूर से। गीतकार हैं

दानिश, साबरी और ऐश्वर्या की आवाज़ में। गीतकार हैं मीत ब्रोज़ और संगीत दिया है मीत ब्रोज़ ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म रांझना से। आवाज़ है जावेद अली की, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: कार्यक्रम नैतरानी में अब पेश है फिल्म शिद्दत का ये गीत, अंकित तिवारी की आवाज में। गीतकार हैं कुंवर जुनेजा और संगीतकार हैं मनन भारद्वाज।

कार्यक्रम नए तराने के अंत में पेश है फिल्म छिछोरे का ये गीत, नकश अजीज़ और देवनेगी की आवाज़ में। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नए तराने, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। हिंदी समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान

0: ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जाँच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी आवाज। आपकी पसंद कार्यक्रम में पहले गीत के लिए फरमाइश मिली है डाबर तालाब लोनी से। रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुरारा ने पसंद किया है इस गीत को। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश ने सुनना चाहा है इस गीत को। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने पसंद किया है इस गीत को। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, छावेंद्र कुमार ने सुनना चाहा है इस गीत को। हटरी चौक भिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन, पिंकी देवांगन ने पसंद किया है इस गीत को। लच्छनपुर से सरोजनी रजक, सीमा रजक, कनक रजक, पल्लवी रजक, रश्मि साहू, गीता साहू ने फरमाइश किया है इस गीत को। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, पंशीलाल और लबी श्रीवास्तव ने पसंद किया है इस गीत को। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

फिल्म का नाम था दिल है तुम्हारा। इस गीत के संगीतकार थे नदीम श्रवण, गीतकार थे समीर, आवाज़ थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में अगले गीत के लिए पत्र भेजा है लेवा खेल मोहल्ला चांदुर विश्वा से, जिला बुलठाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खड़ से, ललिता खड़ से, परी खड़ से, गणेश कार्तिक भाव खड़ से, स्वाति चौधरी प्रयाग चौधरी ने पसंद किया है इस गीत को। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमारी नेभवानी, संगीता आकाश, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर आयुषी हनी और परिवार के सभी सदस्यों ने सुनना चाहा है अपनी पसंद।

का ये गीत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पसंद किया है इस गीत को। लेवई अंबिकापुर से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, इन्होंने फरमाइश की है इस गीत के लिए। फिल्म का नाम है बाजीगर। गीत संगीतकार हैं अनु मलिक, गीतकार हैं रानी मलिक, आवाज़ दिया है विनोद राठौर और पंकज उदास की।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो,
1: डीजे वाले बाबू को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं, चलते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम में। अगले गीत के लिए पत्र भेजा है ग्राम भरी टोला डोंडी बालोद से। नमित कुमार गौतम, पीहू, नीतू, मुरली गौतम ने फरमाइश की है इस गीत की। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की। ग्राम अमलेश्वर से डूमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, इन सभी ने फरमाइश की है इस गीत की। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गरेनकर, धीरज, इन्होंने फरमाइश की है इस गीत की। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, गीतकार हैं असित भोपाली, आवाज़ दी है शारदा सिन्हा ने।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में अगले गीत के लिए फरमाइश मिली है रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रूनो, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत। वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत। लिवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा ने फरमाइश की है ये गीत। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। इस गीत के संगीतकार हैं राजेश रोशन। गीत लिखा है सावन कुमार तक। आवाज़ दिया है कुमार शानू ने।

0: राम राम हो किशन भैया,
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भिड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: यदि राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

आपकी पसंद कार्यक्रम में इस गाने की फरमाइश मिली है। पुणे से प्रियंका, पंकज, आर्या, जरुण वरुण से बाबा साहेब वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे और परिवार के सभी सदस्यों ने फरमाइश की है। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य ने, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे ने इन सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है जीत, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीतकार हैं समीर, आवाज़ दिया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगले गीत के लिए पत्र मिला है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने। बलौदा अकलतरा से, माफ कीजिएगा, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल ने फरमाइश की है। साधुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। ग्राम बंगला मटिया जिला बालोद छत्तीसगढ़ से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, इन सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। संगीतकार है अनु मलिक, गीत लिखा है रानी मलिक ने, आवाज़ दिया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आखिरी गीत के लिए फरमाइश मिली है शहीद टेकराम चौक हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार ध्रुव ने फरमाइश की है मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पुहरकार नर्मदा सुनील साहिल अंश पुहरकार और कुमारी सुजाता पुहरकार ने पसंद किया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानो और रविंद्र सेन ने पसंद किया है इस गीत को नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने इन सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत फिल्म का नाम है दिलवाले आवाज दिया है अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह ने संगीत दिया है प्रीतम ने गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जीआर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने को कहा। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई की है। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने बताया कि प्रत्याशी और उनके पिता का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। ये विस्फोट इतना भीषण

0: था कि दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में दो मजदूर मध्य प्रदेश के हैं जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज दोपहर रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डुमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
1: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
3: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
1: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
3: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
3: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
3: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
3: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
3: जी।
1: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
3: जी। अजीत जी, मैं याद

0: कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
0: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
0: जी।
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी

0: पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर

0: लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर हम उसके

0: फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
0: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती। हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
0: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
0: सच?
1: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं। वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन। श्रोताओं, कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है सपना। दोस्तों, सपना इंसान की आशा, कल्पना और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है। सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सुनते हैं पहला गीत। फिल्म का नाम है गाइड। संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने। गीतकार हैं शैलेंद्र। आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे कार्यक्रम चयन में सपने की। सपना केवल सोते समय दिखाई देने वाला दृश्य नहीं है, बल्कि वह आशा है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की आंखों में कोई ना कोई सपना होता है, कुछ बनने का, कुछ पाने का और अपने प्रियजनों को खुश रखने का। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत की फिल्म का नाम था हिम्मत वाला, संगीत दिया था बप्पी लहनी ने, गीतकार थे इंदीवर, आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी आउ हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए
4: तोरे खोपा माँ चंदनी गोंद।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: कार्यक्रम चयन में हम बात कर रहे थे सपने की। दोस्तों, सपने जीवन का सबसे सुंदर एहसास है। कहा जाता है कि सपने ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। सपनों के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। तो सुनते हैं ये गीत।

0: नतीजा हो आपके व्यापार का नाम।
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: कार्यक्रम चयन में हम बात कर रहे थे सपने की। श्रोताओं, बचपन जीवन का सबसे सुनहरा और निश्चल दौर होता है। इसी उम्र में मन में अनगिनत सपने जन्म लेते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी तो कोई कलाकार। बचपन के ये सपने मासूम होते हैं, लेकिन यही सपने आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा तय करने की प्रेरणा देते हैं। तो सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आपने सुना खूबसूरत फिल्म का ये गीत, आवाज थी कुमार शानू की, संगीत दिया था जतिन ललित ने, गीतकार थे संजय छेल।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश।

हम सुन रहे थे सत्या फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने। गीतकार थे गुलजार। संगीत दिया था विशाल भारद्वाज ने। दोस्तों, सपने तभी साकार होते हैं जब उनके साथ मेहनत, धैर्य और विश्वास जुड़ जाए। इसलिए हमें सपने देखना भी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है लक बाय चांस। शंकर महादेवन ने आवाज़ दिया है, संगीत दिया है शंकर एहसान लाय ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के एक बजे
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं।

0: केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अब भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय है अरहर की खेती कैसे करें।
2: शेष स्थान है चना के बाद अरहर दूसरी मुख्य दाल वाली फसल है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसकी खेती की जाती है। इस फसल के उच्चहन एवं भर्री भूमियों के अलावा धान के खेतों के मेड़ों में भी की जाती है। उन्नत तकनीक के माध्यम से किसान भाई अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फसल को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए गर्म नर्म जलवायु तथा पौधों पर फूल आने से लेकर फली और दाने बनते समय तक शुष्क मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। इस फसल के लिए समुचित जल निकास वाली हल्की से लेकर भारी मिट्टियां खेती के लिए उपयुक्त रहती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में कन्हार भूमि में इस फसल की काश्त की जाती है। अरहर को धान खेतों की मेड़ों में भी सफलतापूर्वक उगाई जाती है। अरहर फसल के लिए भूमि की तैयारी मानसून प्रारंभ होते ही एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई एवं देशी हल या ट्रैक्टर द्वारा 2 बार जुताई करें, पाटा लगाकर समतल करना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिला दें। तत्पश्चात अंतिम जुताई के समय बुआई के पूर्व क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलावें, जिससे दीमक आदि कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। बुआई के पहले जल निकास के लिए खेत में चारों ओर नालियां बना दें। जमीन के प्रकार, बुआई का समय तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उन्नतशील किस्म का चयन करें। उपास 120, यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए संवेदनशील मध्यम ऊंचाई होती है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आशा, इस किस्म की अवधि 160 से 180 दिन होती है। उकठा एवं बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों हेतु उपयुक्त है। इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसी तरह नंबर 148, यह किस्म 160 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए सहनशील है एवं बस्तर तथा सरगुजा के क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति, यह किस्म 130 से 140 दिन में पक जाती है। उकठा रोग के लिए निरोधी एवं बोनी किस्म है। यह पेड़ी फसल हेतु उपयुक्त है। उपज क्षमता 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लक्ष्मी, यह किस्म 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों हेतु

0: उपयुक्त किस्म है। उपज क्षमता की बात करें तो यह 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अरहर की बुआई मानसून के ऊपर निर्भर करता है। साधारणतः बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक रहता है। देर होने की स्थिति में इस फसल की बुआई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा बीज के आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सामान्यतः मध्यम आकार और उच्च गुणवत्ता वाला बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कतार से बोने के लिए लगता है। अरहर के साथ सह फसली खेतों में अरहर की बीज दर शुद्ध फसल के बराबर रखनी चाहिए। बुआई के पूर्व बीज को कवकनाशी दवा बावेस्टीन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के बाद राइजोबियम तथा पीएसबी कल्चर की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। अरहर के बीज कतारों में 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर बोना चाहिए। मध्यम एवं देर अवधि वाली किस्मों के लिए कतारों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बुआई हल के पीछे पंक्तियों में या सीड ड्रिल से करें। उर्वरकों की उचित मात्रा का निर्धारण मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना लाभदायक होगा। अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 60 किलोग्राम स्फुर एवं 20 से 30 किलोग्राम पोटास बुआई के समय कतारों में डालना चाहिए। उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व खेत में देना लाभदायक होता है। खरीफ की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। अरहर के 20 से 60 दिन की अवस्था बहुत ही क्रांतिक होती है। खरपतवार से 20 से 40 प्रतिशत तक का उत्पादन की कमी पाई गई है। अरहर में 2 बार निंदाई गुड़ाई 25 से 30 दिन पर और 45 से 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों अरहर की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि अगर सूर्य के जैसे हमन ला चमकना है तो सबले पहले हमन ला सूर्य के जैसे जलना चाहिए। यही विचार के संगे हमर घर गोसाइन कार्यक्रम में शुरुआत करत ही। आज जमो सुनया संगी मनकर हमन स्वागत करत ही। आज संगे रही रमा बहिन, जय जोहार, राम राम। देखी संगी हो, हमर जो सोच है ना ओला हमन ला सकारात्मक रखना चाहिए। काबर की जो हमर सकारात्मक सोच के शक्ति है वही हमन ला सफलता दिला सकता है। अब हमन जहाँ भी नकारात्मकता रखब, चाहे कहूँ हमन कह देब कि भाई हम ये जो काम आए एला मैं नहीं कर सकूँ, ये हर मोर जग नहीं बनी, तो देखी ऐसा हो जाए ना कि वो चीज़ हमर जग नहीं होही फिर, तो ऐसा हमन ला नहीं करना है। अब हमर जगह खेती बाड़ी पर हमन देखब कि भाई हमर जग खेत है, अब हमन कहथन कि भाई अब एक खेत तो हमर जगह है बकिर हमन एमें खेती नहीं करे सकन। अब खेती नहीं करे सकन तो भाई कैसे ओकर काम महत्व होही। तो ये सब चीज़ ला छोड़ना चाहिए कि जब हमर जग काम है, देखत ही हमन कि हमर जग खेत है, तो जब हमन ओमें जुताई बुआई करब तबे तो हमर काम होही है कि नहीं। तो ऐसन में देखी, चाहे तो कोनो चीज़ हो, हमर कहीं जाए आए के बात हो तो हमन कहब कि भाई आज मोरे काम नहीं हुआ था, तो का कहती हमन कि मैं जा नहीं सकत हूँ, मैं तो मौके टाइम ही नहीं भेटात है, आओ मैं तो बेरा निकाल नहीं सकत हूँ। तो ये सब देखी एक ठन कहब हमन की बेकार बेकार के बहाना है। हमन ला कहूँ घूमना जाए रहते देखी, और कहूँ आओ खाए पिए बजाना रहते, ओगा नहीं हमन देखती कि हमन बढ़िया अपन बेरा निकाल लेती,

0: और घूम घाम के और फिल्म देखना है तो ओहुए हमन चले जाती। तो ऐसन में भाई जब हमन बढ़िया काम ला करना चाहती तब हमन क्यों काहे नहीं करे सकती, काबर हमन अपन सकारात्मक सोच के शक्ति ला उपयोग नहीं करती। देखिए सकारात्मक सोच के शक्ति इतना है कि जो हमार काम है ना अगर नहीं हो सकता हमन बार बार कहब ना ओला कि ला हमन कर लेब और लगे रहब ओमे तो वो हमार काम हर जरूर हो ही। आओ बाकी रही हुआ है कि कहों कहों हमन ला नहीं भी बोलना पड़ेल ऐसा जगह में कि जहाँ जो चीज़ खराब चीज़ है जैसे कोनो हमार संगिया है नशापत्ती करे बर कहता है चाहे तो कोनो गलत काम बर करता है तो वो समय हमन ला नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना भी वहीं पे जरूरी है। देखिए जो काम हर हमार बर चाहे दूसर बर बढ़िया नहीं आए तो ये चीज़ ला हमन जरूर सोची। आओ एक ठन चीज़ ला तो भाई हाओ जरूर बोलना है वो है हमार रेडियो ला सुनना। तो रेडियो ला सुनत रही। अब एक ठन और गोइठा है बहुत खास चीज़ कि जो हमार नोनी मना है अब तो स्कूल भाई शुरू हो गए सा है बरखा ही मारे आता है अब बढ़िया प्लास्टिक ला पहन पहन के जाता है नोनी मन बाबू मन पढ़े बर तो हमार नोनी मन ला हमन ला बढ़िया पढ़ाना है और ऐसा बनाना है कि हमार जो नोनिया है वो अपन पैर में खड़ा हो सके। अब हमन जानती कि जो भ्रूण हत्या है ये हर एक ठन अपराध है और कोनो जगह में ये अपराध ला अब कोनो नहीं करते और कोनो करते तो ओला सजा कर भी प्रावधान है। तो हमन ला अपन अब जैसे नोनी मन बाहरे बाहरे हमन देखब कि गांव गांव से जाके कहों कहों बाहर भी रह के पढ़ता है और अपन भविष्य ला बढ़िया बनाता है तो ऐसन में हमन ला ओमन ला ये स्वतंत्रता देना है कि जो ओमन करना चाहता है आगू बढ़ना चाहता है जो चीज़ ला सीखना चाहता है वो चीज़ ला ओमन सीखे और आगू बढ़े। और देखिए हमार भी आगू बढ़े आज तो गुड बात भी हवे भाई बकीर एक ठना जे संदेश है तो लेगी सुनी।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: हाँ तो संगी हो देखिए संदेश लहान सुनिए ना अब हमार गुड बात एक रमा है ते में हमार जंगी संगी मन जो है भाई ओमन कर हमन स्वागत करत ही और ये हमार ईमेल आए संगी मन कर और ओमन कर चिट्ठी भी आत रहे हमार जगह तो ये पहला जो है ईमेल ये है हमार संगी मन आए पहांदा पलारी ले नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशान देवांगन लखनलाल देवांगन सावित्री बाई देवांगन और इमन कर ये ईमेल आई सा है तो लिखता है कि घर गोसाइन कार्यक्रम ला हमन सुनती और हमन ला बहुत बढ़िया लागेल ये बोली ला भी हमन सुनत ही और भाई बढ़िया लगेल हमन तो खुदे बोलैया है ने कर तो हमन लाओ बढ़िया लागेल कि हमन ला सुनती और भेंटवार्ता भी रथे और संगे संगे लोकगीत तो रहबे करते छत्तीसगढ़ी भी हमन सुनती और भोजपुरी सरगुजिया सबे जा सुनती और हमार सुमतिया बहन बढ़िया कहनी ला लाने रहिन तो ओहर एकता कर बारे में रहीस तो कहनी हर हमन ला बहुत बढ़िया लागिस तो इतना बढ़िया कहनी पर हमार सुमतिया बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद है हमार कतिले तो भाई हमार कतिले भी ढेरे ढेरे धन्यवाद है कि ईमेल ला भेजे है तो इनकर पसंद कर लेगी सुनी ये लोकगीत।

हाँ तो संगियो बढ़ियन केदार यादव साधना यादव कर गाल छत्तीसगढ़ी गीत सुनत रहें। अब हमार संगी मना है ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा ले जोधन सिंह पैकरा घूर्णी पैकरा करिश्मा पैकरा सुमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम पैकरा हीरामणि पैकरा ईश्वर्या पैकरा और वहाँ बंजारी रानले अनीता रितु राहुल पारुल और जमोई मनकर संगी मना है। कहता है कि हमन कार्यक्रम ला सुनत ही और कार्यक्रम हमन ला बहुत बढ़िया लागेल अजय ससी बहन कर भेंटवार्ता सुनें तो हमन ला बहुत बढ़िया लगी सो बहुत अच्छा अच्छा गोइट बात बताते हैं। हमार आंगनबाड़ी कर बारे में भी बहुत सारा चीज़ हमार गांव में सब जे सुनता है सीखता है और आंगनबाड़ी जे मन नहीं

यात्रहीन तो मन भी जाता है और हर चीज के जैसे पौष्टिक खाना भेटाते तो ओकर भी लाभ उठाता है। तो ऐसने नवा नवा चीज हमन ला बहुत सारा ऐसा चीज है जो रेडियो के माध्यम से पता चलते। तो इतना बढ़िया सब चीज का जानकारी देहे पर ढेर धन्यवाद। तो हमर कति ले ही बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई रेडियो ला सुना था और रेडियो कर माध्यम से लाभ उठा था। इनकर पसंद कर लेगी सुनी ये लोकगीत।

ये सारस्ता सुनकरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ले प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार राम खिलावन सिंह पैकरा लिखत है कि घर गोसाई ने प्रस्तुत कर मनला हमर कति ले राम राम जय जोहार हमर कति ले भी राम राम जय जोहार है। हमन सबो कार्यक्रम ला ध्यान से सुनथन आओ गीत मन हमन ला बढ़िया लगते तो भाई बहुत अच्छा लिखना है कि कार्यक्रम ला सुनते और हमारे संगी मना है नियमित हमार कार्यक्रम ला सुनत रहते एमन कर संगे आए हैं देखी बोरी पारा ले रंजना सीता गीता गुड्डी ये सब जी लिखता है कि हमन ला ये कार्यक्रम हर बहुत बढ़िया लागे और भेंटवार्ता कर माध्यम से कुछ कुछ नवा नवा हमन सुनती और जो भी हमन सुनती तो कर लाभ जरूर उठाती डॉक्टर बहनी मन आते और स्वास्थ्य कर बारे में जानकारी देते और अलग अलग चीज की जानकारी हमने कार्यक्रम में सुनती सीखती कि भाई पर्यावरण ला भी बचाना है ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है और बरखा कर बारे में हमन सुने कि बरखा कर पानी ला भी बचाना है तो सब जे ए बात में जागरूक हुई तो देखिए बहुत बढ़िया अपन विचार ला लिखी ना है। हमार संगी मन का ढेरे ढेरे धन्यवाद और इनकर पसंद कर लेगी सुनी ए लोकगीत।

बहुत सुंदर देखिए देवी भजन रहीस, एला हमर संगी मन पसंद करे रहिन, भोजपुरी रहिस और राम लल्लू पांडेकर गाल रहिस। अब हमर संगी मन आहे, ए मन आहे

ए बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत रही गुलाब सिंह पैकरा और संगताकर गाल और यही गीत ला सुनना चाहत रहें हमार संगी मना है रोहित लक्ष्मी यह है रायगढ़ वार्ड नंबर 3 से और इनकर संगे आए हैं रानी दीपा लक्ष्मी जय लक्ष्मी ऋषभ अंश और इमन कहते हैं कि 6 जुलाई लघर गोसाइन ला हमन सुनें और लाली बहन के गोठा माला बहुत बढ़िया लागिस और भेंटवार्ता में किस्मतिया बहन बढ़िया गुड बात लाने रहीन शशि बहन ले तो बढ़िया लागिस बाल अपराध कर बारे में हमन जानकारी सुनें बहुत बढ़िया लागी सो ये जानकारी बर सब झेला ढेरे धन्यवाद और शशि बहन बहुत बढ़िया गुड बात करी और लाली बहन कर प्रस्तुति बहुत बढ़िया रहीस तो भाई अपन पसंद के गीत सुने हुई है छत्तीसगढ़ी तो बढ़िया लगे हुई अब हमारे संगे मना है और थोड़कुन बेरा देखिए बाची सा है तो ये आए हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ ले करुणा वर्मा प्रियंका बंछोर दिनेश वर्मा लिखत है कि घर गुसाइन कार्यक्रम हमन सुनत थी और हमन ला बहुत बढ़िया लागेल और हमार का पसंद के ये गीत सुना दी है तो और भाई ईमेल भेजिया तो कुछ और भी लिखिया हमार कार्यक्रम के बारे में आज सुना थी ए लोकगीत।

0: हाजो संगीओ बढ़िया भोजपुरी गीत सुनेन रामलोचन यादव संग थमन कर गाल रही देखिए कर संगे संगे भाई हमारे जारे कर बेरा हुआ था तो चलो चलो थमन नहीं कहब कि भाई जैसे भाई खाओ घामा हुआ है तो ऐसा में अपन स्वास्थ्य कर तीहा करी संगे संगे लड़का मन ला रोज के रोज हमन ला स्कूल भेजना है और मन के शिक्षा के तीहा करना है। आज घर गोसाइन ले रमा बहिनी है चलत है फिर भेटबो राम राम जय जोहार।
1: तुमरिया या बघरया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर गोसाइन, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:41 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। पहले गीत के लिए फरमाइश मिली है, मजनू का टीला, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजादा पोहरकार, पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, रिंगरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चौटाला हरियाणा से धारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम, मुन्ना दानिश, आसिफ शेख ने। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हम सुन रहे थे राज फिल्म का ये गीत, आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत था नदीम श्रवण ने, संगीतकार थे समीर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज में हमें ईमेल मिला है, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंदिरा नगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो अब्दुल, जमीर मोहम्मद, अलीम आसिफ नईम राजा, जशपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी, और डोंडी लुहारा से प्रभा रानी, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश, मिठा अलखा मिठा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्फाक, खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा।

अभी आप सुन रहे थे आई हेट लव स्टोरी का ये गीत। आवाज थी श्रेया घोषाल और सोना पत्रा की। संगीत दिया था विशाल शेखर। गीत था कुमार ने। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं ईमेल की गूंज।

और अगला ईमेल में हमें मिला है पत्र बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहानावाज सरफराज, फरदीद सुहान अरजान अबान अब्बासी, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदला काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन से, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार महिरा अजीम और निशा अजीम ने, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागुणे पार्थ हागुणे, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े ने पसंद किया है इस गीत को।

0: the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: अभी आपने सुना अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत। आवाज थी आतिफ असलम और अलीशा चिनी ने, संगीत दिया था प्रीतम ने, गीत लिखा था आशीष पंडित ने। कार्यक्रम में सुनते हैं ये अगला गीत।
2: डिटेल बताइए, बताइए आप।
1: फिल्म का नाम है धड़कन। आवाज थी आवाज है अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक और कुमार शानू की। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने, गीतकार है समीर। इस गीत के फरमाइश करता है राजकोट से प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम कलावती सोनी, कच्छ भुज से जगदीश चहरी और पूजा और पायल कुमारी, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश, चंद्रदागी, सौराष्ट्र राजकोट से राजेश कृष्णा, प्रथम प्रवीण सोनी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी काम में करुणा, मीना अश्विनी और विपुल काम ने। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, दादरी गेट विभानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल कुणाल मेहरा, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से अनिल कुमार, खोड़के वैशाली अनिल, वैष्णवी खोड़के गायत्री खोड़के और यज्ञेश खोड़के ने, उमरखेड़ महाराष्ट्र अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, अर्जुन गवहानकर, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन, अमरावती।

महाराष्ट्र से प्रवीण हागोंडके, पार्थ हागोंडके। चलिए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश का आखिरी गीत।

0: कर 15 मिनट होने को हैं। दोपहर समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: कर 15 मिनट होने को हैं। दोपहर समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। की प्रामणन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामणन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत

0: वाहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई EMI नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक VK बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशन

0: नरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत। संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम में अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल। शायर है हसन कमल।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर

कार्यक्रम का अगला गीत आतिफ असलम की आवाज में, संगीत दिया है सचिन गुप्ता ने, गीतकार हैं समीर, सचिन गुप्ता, सईद कादरी, आतिफ असलम और उस्मा शाह ने।

कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये आखिरी गीत। इस गीत को गाया है जय वालिया ने। संगीत और गीत हैं आर्यंस की।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:05 में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 5:30 में आप सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:05 में आप सुनेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 6:10 में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार जो आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित होगा। शाम 6:20 में आप सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम गोधली जिसमें आप सुनेंगे कुछ सादरी लोकगीत छत्तीसगढ़ी लोकगीत और वंदना गीत। शाम 6:30 में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। शाम 7:05 में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 में आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। रात 8 बजे आप सुन सकेंगे सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात 9:15 में आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात 10:30 में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है हाथियों की गतिविधियों पर केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मण गढ़, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 96 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। हाथियों से सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार कोट। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भजन संध्या कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है सुरेश वाडकर की आवाज में देव कोहली का लिखा ये भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश की आवाज में ये भजन।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ए हरिहरन का गाया, देव कोहली का लिखा ये शिव भजन।

ए हरिहरन के गाए इस शिव भजन के साथ ही आज की भजन संध्या अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये बचे हैं तो क्या करेंगे? शायद फिजूल खर्च बंद कर देंगे, हर रुपए का हिसाब रखेंगे। पर ज़रा सोचिए, जिस वाटर अकाउंट से हम हर दिन पानी निकाल रहे हैं उसका बैलेंस कितना बचा है? पानी, जिसके बिना न चाय बनती है, न खेती, न जिंदगी। दोस्तों, हम मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, पर धरती का पानी कम होता जा रहा है, फिर भी हम बेफिक्र होकर नल खुला छोड़ देते हैं। फर्क बस इतना है कि मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है पर सूखी नदी एक दिन में वापस नहीं आती। दोस्तों, आज भी दुनिया के करोड़ों लोग साफ पानी पीने के लिए रोज़ाना लंबी दूरी तय करते हैं, और हम में से कई लोग ब्रश करते समय, गाड़ी धोते समय या टंकी ओवरफ्लो होने पर सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बहने देते हैं। सोचिए, अगर एक दिन हमारे घर की टंकी खाली हो जाए, न नहाने का पानी न पीने का, तब कैसा लगेगा? इसलिए समझदारी यही है कि संकट आने का इंतज़ार ना करें। जल संरक्षण कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें हैं। ब्रश करते समय नल बंद रखें, बारिश के पानी को बचाने की कोशिश करें, टपकते नल तुरंत ठीक करवाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें, और बच्चों को भी पानी की अहमियत सिखाएं। बूंद बूंद से सिर्फ घड़ा नहीं भरता, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। तो आज, अभी और इसी पल एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। हम पानी की हर बूंद की इज्जत करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं बहाएंगे और दूसरों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि जिस दिन आखिरी बूंद बचेगी, उस दिन पैसा नहीं, सिर्फ पानी ही सबसे बड़ी दौलत होगी। नदियां कभी अपने लिए नहीं बहती, बादल कभी अपने लिए नहीं बरसते। कुदरत हमें हर दिन सिखाती है कि सबसे खूबसूरत चीज़ वही है जो दूसरों के काम आए। इसलिए पानी बचाइए। आज जो बूंद हम बचाएंगे, वही कल किसी बच्चे की मुस्कान, किसी किसान की उम्मीद और किसी प्यासे की राहत बन सकती है। तो इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शान और शंकर महादेवन की आवाज़ में फिल्म लगान का ये गीत। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत दिया है AR रहमान ने।

दोस्तों, क्या कभी आपने किसी राजा को अपनी प्रजा के घर जाते देखा है? शायद नहीं। पर भारत की धरती पर एक ऐसे राजा हैं जो हर साल अपने महल से निकलते हैं, ना किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए, ना किसी विजय यात्रा के लिए, बल्कि अपने भक्तों से मिलने के लिए। और वो राजा हैं जगत के नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ। दोस्तों, आज समय की दास्तान में हम आपको लेकर चलेंगे उड़ीसा के पुरी, जहाँ लाखों नहीं करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और हर ओर सिर्फ एक ही स्वर सुनाई देता है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पर आखिर क्या है रथ यात्रा? कैसे शुरू हुई? क्या लाखों लोग सिर्फ रस्सी को छूने के लिए घंटों इंतजार करते हैं? और क्या है भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आँखों का रहस्य? आज जानेंगे सब कुछ, पर इस गीत के बाद। तो आइए करते हैं शुरुआत उस कान्हा से जो कभी गोकुल में बांसुरी बजाते हैं तो कभी पुरी में जगन्नाथ बनकर अपने भक्तों को गले लगाते हैं।

दोस्तों, इतिहास की किताबें कहती हैं 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन देव ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। तब से यह परंपरा और अधिक व्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सामने आई। पर आस्था की अपनी एक कहानी है। कहा जाता है, एक दिन माता सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलदाव से कहा, मैं भी नगर देखना चाहती हूँ। बस भाइयों ने बहन की इच्छा पूरी की, तीनों रथ पर सवार हुए और नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। यही यात्रा आज रथ यात्रा के नाम से जानी जाती है। पर इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है, यहाँ भगवान अपने सिंहासन पर नहीं बैठते, वे अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। और शायद इसलिए इसे सिर्फ यात्रा नहीं, मिलन कहा जाता है। तो इसी मिलन के नाम आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के बारे में एक बात शायद आपको भी हैरान करती। दुनिया के ज़्यादातर मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन पुरी में साल में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान खुद अपने भक्तों के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। बस यही है रथ यात्रा। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। पर इस रथ यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है, यहाँ भगवान राजा नहीं बनते, अपने भक्तों के साथी बन जाते हैं। रथ की रस्सी पर कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस भक्त और भगवान। और शायद इसी प्रेम का दूसरा नाम है जगन्नाथ, यानी जगत के नाथ। रथ यात्रा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ पुरी में ही नहीं, आज लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोरंटो, यहाँ तक कि दुनिया के 100 से भी ज़्यादा शहरों में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है। तो इसी गूंज के नाम आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, अब बात उस रहस्य की जो भगवान जगन्नाथ को दुनिया के हर देव स्वरूप से अलग बनाता है। उनकी आँखें इतनी बड़ी, इतनी गहरी और बिना पलक झपकाए। एक कथा के अनुसार जब भगवान की मूर्तियाँ बनाई जा रही थीं तो शर्त थी कि मूर्तिकाम का काम पूरा होने तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, पर अधीर होकर द्वार खोल दिया गया और मूर्तियाँ अधूरी रह गई। तब से भगवान उसी रूप में पूजे जाते हैं। भक्त कहते हैं ये अधूरापन नहीं बल्कि संदेश है। भगवान रूप से नहीं प्रेम से पूर्ण होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी आँखें मानो कहती हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी हर खुशी, हर आंसू, हर प्रार्थना। शायद इसलिए जो एक बार भगवान जगन्नाथ की आँखों में खो जाता है उसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए छोटी लगने लगती है। तो इन्हीं खूबसूरत आँखों के नाम आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

और रथ यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक संदेश है। अगर भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों तक आ सकते हैं, तो हम अपने अहंकार से बाहर क्यों नहीं निकल सकते। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हमारा आज का ये क्रम बस यहीं तक।

के मुख्य आकर्षण, कल आप सुनेंगे युवा सोच नए विषय पर और फरमाइशी क्रम महफिल। दोस्तों, अगर आप भी अपने पसंद के गजल की फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें पत्र और ईमेल भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है, क्रम महफिल युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। हमारी ईमेल आईडी है mehfilair@gmail.com। इसी के साथ हमारा दीजिए इजाज़त आपकी दोस्त शालिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा

0: हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज
3: हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रेरणा विषय पर विचार बिंदु। आलेख संकलन और वाचन स्वर है गोपेश पांडे का।
4: प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह देती है। प्रेरणा के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर सकते। यह हमें अपने डर और संदेहों को दूर करने में मदद करती है और हमें अपने साधनों को पूरा करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करती है। प्रेरणा एक अमूल्य धरोहर है जो हर व्यक्ति के जीवन को उज्जवल बना सकती है। हमें इसे पहचानने, पोषित करने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं। जब तक जीवन में प्रेरणा बनी रहती है तब तक हम

0: हमारी सोच, हमारा प्रयास और सफलता का सफर जारी रहता है। प्रेरणा का संबंध केवल हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारे मनोविज्ञान से भी है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक हार्मोन जैसे डोपामाइन का स्राव करता है, जिससे हमें उत्साह और ऊर्जा मिलती है। प्रेरणा हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संतुलित रखती है। प्रेरणा के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि हमारे परिवार, मित्र, शिक्षक, यहाँ तक कि हमारे अपने अनुभव भी। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता आ रहा है, तो यह भी हमें प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेरणा के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला, प्रेरणा के आंतरिक स्रोत। आत्मविश्वास प्रेरणा का एक प्रमुख आंतरिक स्रोत है। अपने आप पर विश्वास करना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना ही आत्मविश्वास है। प्रेरणा का दूसरा आंतरिक स्रोत होता है लक्ष्य। आत्म मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन करना और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, यह भी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है। आत्म निर्देशन, अपने आप को निर्देशित करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक योजना बनाना आत्मनिर्देशन के अंतर्गत आने वाला प्रमुख विषय है। यदि हम बातें करें प्रेरणा के बाहरी स्रोत की, तो परिवार और मित्र, शिक्षक और मार्गदर्शक, पुस्तकें और लेख, यहाँ तक कि वीडियो और फिल्में भी हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और स्टीव जॉब्स, इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को देखकर हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी हमें प्रेरणा देती है। साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पहाड़, नदियाँ, जंगल, झरने हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। कभी कभी प्रेरणा का गलत दिशा में भी उपयोग हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को लालच, ईर्ष्या या अहंकार से प्रेरणा मिलती है, तो यह उसे नकारात्मक कार्यों की ओर धकेल सकता है। इसलिए प्रेरणा को हमेशा सकारात्मक दिशा में ले जाना आवश्यक है। प्रेरणा के महत्व की बात करें तो लक्ष्यों की प्राप्ति इसका मुख्य महत्व है। प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। प्रेरणा हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करती है। प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संघर्षों का सामना करने में मदद करती है। प्रेरणा हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। इस प्रकार प्रेरणा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: प्रेरणा विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, आलेख संकलन और वाचन स्वर था गोपेश पांडे का। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां आज अल निनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजन बाई के नाव ऊपर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल दे जाही राज्य सम्मान। गनियारी गांव ला कला ग्राम के रूप में बनाया जाही। और महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माई लोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गए है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां आज अल निनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। पत्रकार मन ले गोट बात मौमन कहीन कि केंद्र सरकार है इसो अप्रैल में ही अल निनो के चुनौती ले निपटे की तैयारी शुरू कर दे है। ओमन बतैन कि अल निनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारी मन के माध्यम ले बुआई, फसल और बाजार के स्थिति ऊपर सरलक देखरेख करे जाते। उमन कहीन की मानसून में देरी के स्थिति तुअर, सोयाबीन, कपास और आने फसल मन के बुआई प्रभावित हो है। प्रदेश के कतकोन निगम, मंडल, बोर्ड, समिति और आने संस्था मन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मन के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए है। छत्तीसगढ़ राज्य केस

0: शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद में गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति करे गए है, तो उन्हें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ममता साहूला बनाए गए है। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद में वेदराम मनहरे की नियुक्ति करे गई है। संगे संग छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आनंद निषादल बनाए गए है। उन्हें छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष के पद में राजेश कुमार राजपूत की नियुक्ति करे गए है, तो साकंबरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ल बनाए गए है। इसने छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम ल बनाए गए है। जारी आदेश के मुताबिक रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद में डॉक्टर जेपी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद, तो गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद में आनंद कुमार तिवारी और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मंगलदास ठाकुर ल बनाए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा बने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य मन ल बधाई और शुभकामना दे हवें। राज्य शासन ह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 जिन अधिकारी मन के प्रभार में फेरबदल करे है। एकर अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारी मन के तबादला आदेश जारी कर दे गए है। उन्हें राज्य के 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन ल घलो बदले गए है। प्रतीक जैन ल जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाटाला जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव ल जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तो उन्हें तन्मय खन्ना ल जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी ल जिला पंचायत राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए है। इकर अलावा गोकुल राम रावटे ल जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी ल जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता ल जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी ल जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयम ल जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास ल जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए है। संगे संग सुरुचि सिंह ल नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त नियुक्त करे गए है, तो उन्हें विजेंद्र सिंह ल नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम ल नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा ल नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज के समीक्षा करें। ओमन राजस्व मामला में जीरो टॉलरेंस के नीति अपनाए और लोगन मन ला बढ़िया सेवा दे के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री है किसान मन के B1A खसरा ऋण पुस्तिका और भूइया ले जुड़े जानबा व्हाट्सएप के माध्यम ले दे जाए के व्यवस्था करे बर कहिन। ओमन लंबित राजस्व प्रकरण मन के जल्दी निपटारा, राजस्व अभिलेख के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवा मन के विस्तार ऊपर जोर दिन। पद्म विभूषण ले सम्मानित जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजन बाई ला आज रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच में संगीतमय श्रद्धांजलि देगी। ये मौका में संस्कृति मंत्री राजेंद्र अग्रवाल ह डॉक्टर तिजन बाई के नाव ऊपर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल राज्य सम्मान दे जाए के घोषणा करीन। ओमन कहिन कि उखर गृहग्राम गनियारी ल कला ग्राम के रूप में बनाया जाही। संगे संग तिजन बाई के तंबूरा ल रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में देखाए बर राखे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बांचे समाचार कोती। महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माई लोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गए है। बस्तर जिला के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज सिन्हा हाँ बताइन कि जिला में करीबन 90% हितग्राही मन माई लोगिन मन EKYC करवा ले है। ओमन छूटे हितग्राही महिला मन ले तय करेगे बेरा तक EKYC कराए के अपील करे हवे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के जम्मो पात्र परिवार मन ला घर देवाए बर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले जरूरी पहल करे की विनती करे हैं। ओमन बताइन कि आवास प्लस 2.0 के सूची और ग्राम सभा के दौरान जौन पात्र हितग्राही मन के नाम शामिल नहीं हो पाए है ओखरो मन के समस्या के समाधान पर जरूरी निर्णय लेके विनती करें।

0: नंबर में हो या नगरीय निकाय के आम औ उपचुनाव की तैयारी के समीक्षा पर आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले बैठक लेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह सचिव स्तरीय बैठक में अधिकारी मल्ल बेरा में पूरा काम करे के निर्देश दिन। जानबा के मुताबिक प्रदेश के 15 नगरीय निकाय जेमा 4 नगर पालिक निगम 5 नगर पालिका परिषद के संगे संग 6 नगर पंचायत शामिल है। एकर कार्यकाल एसो दिसंबर में खत्म हो गया है और संगे संग 2 नवा बने नगर पंचायत में घलो आम निर्वाचन की तैयारी करे जाते। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के गतिविधि ल औ ज्यादा प्रभावी बनाए बर उच्च शिक्षा विभाग 29 जिन अंशकालिक जिला संगठक मन के नियुक्ति करे है। ये संगठक मन ल 2 भर उपराह जिम्मेवारी दे गए है। उन्हें कलेक्टर मन के समन्वय ले जिला स्तरीय सलाहकार समिति बना के NSS के कामकाज के सरलग निगरानी करे के निर्देश दे गए है। रायपुर के तीर उरलामा 1 फैक्ट्री में काली संझा होए हादसा में 3 झीन मजूर मन के मौत हो गई है। जानबा के मुताबिक ये घटना ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के सेती हुई। विस्फोट के बाद 2 झीन मजूर के मौकज में मौत हो गई और 1 झीन मजूर के अस्पताल ले जात खानी मौत हो गई। 2 झीन मजूर मन मध्य प्रदेश के रहिया रहे तो उन्हें 1 झीन मजूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के रहिया रहे। ये फैक्ट्री में पिग आयरन के रिफाइनिंग के काम होते। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। यही बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश ऊपर कारखाना प्रबंधन मृतक श्रमिक मन के परिवार वाले मल्ल 30-30 लाख रुपया के आर्थिक सहायता दे ऊपर मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इंडोनेशिया में पीटी क्राकाटाउ स्टील परसेरो TBK के संग समझौता ज्ञापन ऊपर दस्तखत करे के घोषणा करे है। इस समझौता के तहत स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन पर 1 संयुक्त उद्यम बनाए के संभावना खोजे जाही। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा कहिन कि ये साझेदारी पारंपरिक सीमा ले परे और अवैया बेरा बर क्षमता निर्माण करे के प्रति सेल के प्रतिबद्धता ला दर्शाते। अफ्रीका में 4-12 जुलाई तक चलत एशियन पैसिफिक औ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के जयदीप साहू स्वर्ण पदक जीते है। जयदीप 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में बढ़िया प्रदर्शन करत 452 किलो ले ज्यादा के वजन उठाइन। जानबा के मुताबिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 आने खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला घलो भाग लेवत हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अलनीनो के संभावित प्रभाव के समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजनबाई के नाव पर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल दे जाही राज्य सम्मान। गनियारी गांव ला कला ग्राम के रूप में बनाया जाही और महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माइलोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गई है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाश
2: छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम कोधुरी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस सादरी रिंजा कर्मा गीत के साथ, जिसे गाया है रामेश्वर लकड़ा और साथियों ने।

रामेश्वर लकड़ा और साथियों के स्वरों में आपने ये सादरे रिंजाकर्मा गीत सुना। आइए अब सुनते हैं गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के स्वरों में ये छत्तीसगढ़ी गणपति वंदना गीत।

गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के गाए इस छत्तीसगढ़ी वंदना गीत के साथ ही गोधूली कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेब और एफएम बैंड्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म महबूबा का ये दो गाना सुना, जिसे लिखा था आनंद बख्श ने और संगीत था आरडी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं रविंद्र जैन का लिखा और गाया, माफ कीजिएगा, रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत सुनिए यशोदास की आवाज में फिल्म सुनैना से।

0: किशोर कुमार की गाए फिल्म मिले के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है।
1: प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से

0: नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो

0: व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ई केवाईसी करवा लिया है। उन्होंने छूटे हुए हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है।
1: महतारी बंधन योजना का जो ई के वाई सी का प्रोग्राम चल रहा था 30 जून तक उसका लास्ट डेट था, तो उसमें कुछ लोग छूट गए थे, तो हमारा भी यहाँ 91% तो हो ही गया था, लेकिन अभी जो छूटे हुए लोग हैं उसके लिए 30 अगस्त तक का डेट बढ़ा दिया गया है ताकि उनका ई के वाई सी 100% पूर्ण हो सके। ये सभी जिलों के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ का।
0: प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरीशंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग का अध्यक्ष सुधीर गौतम को बनाया गया है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। वहीं राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहलामानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीत में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने डॉ तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला क्षेत्र में हर वर्ष राज्य सम्मान दिए जाने की घोषणा की।

0: उन्होंने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही तीजनबाई के तंबूरे को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। श्री शर्मा ने बताया कि 24 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची ग्राम सभाओं को प्रस्तुत की गई, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान पलायन और अन्य कारणों से कुछ पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके। इस कारण पात्र सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जा सका है। इसके अलावा तकनीकी कारणों से कुछ पात्र परिवारों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सकें। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों, जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव आर संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन और आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने इंडोनेशिया में पीटी क्राकाटाउ स्टील पर सेरो टीबीके के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस समझौते के तहत स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी। यह समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते औद्योगिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की है। इन संगठकों को 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कलेक्टरों के समन्वय से जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर एनएसएस की गतिविधियों की नियमित निगरानी और प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्यप्रदेश के हैं, जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने पर सहमति प्रदान की है। अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित हो रहे एशियन पैसिफिक और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। जयदीप ने 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 452 किलो से अधिक का वजन उठाया। जयदीप के इस प्रदर्शन पर भारतीय टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर कृष्ण साहू ने खुशी जताई है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 अन्य खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला भी हिस्सा ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आज प्रदेश में दिनभर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा की गतिविधि में कल कुछ वृद्धि होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, हालांकि कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर अगले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी।

और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय ने आज कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कुम्हारी थाने में पदस्थ आरक्षक सोलोमन राजू को निलंबित कर दिया है। और रायपुर विकास प्राधिकरण ने पहले चरण में कमल विहार और राव भाटा सहित लगभग 121 आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बतला दें। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7:20 पर किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आजकल के तहत किसानी पर चर्चा होगी, साथ ही पोषक अनाजों से समृद्धि पर भी चर्चा किसान भाई सुन सकेंगे। सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश सुनेगा रात 8 बजे। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। 10 बजे आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम प्रसारित करेंगे। फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनेगा रात 10:30 पर।

कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे। विचार बिंदु का प्रसारण समय होगा 6:30 पर। 6:35 पर रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनाएंगे। कृषि संबंधित सामयिक सुझाव आप सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात में 6:45 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल हम प्रसारित करेंगे सुबह 7:00। 7:15 पर आप सुनते हैं सुगम संगीत। जनसंपर्क से प्राप्त सूचनाओं और पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा सुनेगा 7:30 पर। कार्यक्रम साहित्य पत्रिका सुनेगा सुबह 8:30 पर। इसमें प्रतिभागी हैं संतोष दास सरल और डॉक्टर अंचल कुमार सिन्हा। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनेगा सुबह 9:00। 10:00 फोन इन लोक गीतों का कार्यक्रम होगा गांव कर गीत। 11:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपको सुनाएंगे। NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुनेगा दिन में 12:00।

12:30 पर एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चैन हम आपको सुनवाते हैं। 1:10 पर महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें चर्चा होगी खान पान में पौष्टिकता, साथ ही क्रम सुनेगा गुलदस्ता। 1:40 पर ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। 2:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा दीदी के गोठ, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण आप सुनेंगे 2:15 पर। 2:45 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम आपको सुनाएंगे। शाम 5:00 आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण किया जाएगा। युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में 5:30 पर युवा सोच और क्रम महफिल आप सुनेंगे। लोक संगीत का कार्यक्रम गोदली सुनेगा 6:20 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी सुनेगा 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम प्रसारित करेंगे 7:05 पर। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:20 पर। 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इंस्टा फरमाइश आप सुनेंगे 8:00। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा। 9:30 पर ईमेल की गूंज हम प्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में 10:00 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री आप सुनेंगे। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनाएंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नसीम अजमेरी की इस गजल के साथ।

भूपेंद्र सिंह के गाए नसीम अजमेरी की इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

जम्मू किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता, गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत हो। धर्मू भैया कर राम राम। देखिए भाई, कार्यक्रम में अब मैं आए हूँ तो गीत संगीत तो होबेज कर ही, संगे संग किसान भाई से मुलाकात करब। राजेश यादव जी से, गोपालपुर में रहते हैं ये, और इनकर से मोरगोट बात हो इस है कि कैसे कैसे खरीफ में का का लगाही, धान और सब्जी कर खेती करके बढ़िया लाभ कमाते हैं, और कोनो न कोनो विषय पर गोट बात तो शुरू में भी करती है मन, कार्यक्रम में करते चरती चर्चा भी हो ही। पोषक अनाज से वृद्धि, मंडी भाव, मौसम कर बात हो ही, और आखिरी में आज कर सवाल पूछल जाही, और जिनकर सही जवाब आई से उनकर नाव ला भी मैं कार्यक्रम कर आखिरी में ले हूँ। देखिए हमार हमेशा कथी कि भाई देखिए महिला मन जो है हमार जो आगे आए, अभी हर क्षेत्र में आगे आता है, अब वो नियर नहीं है कि लड़की छुआ और लड़का छुआ, सब पढ़त हैं लिखत हैं बढ़िया, हर क्षेत्र में जो है महिला मन कर भागीदारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए हमारे यहाँ यही ला बढ़ावा दे बर कहब कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाल गई हमार भारत सरकार द्वारा, ये बहुत ही बढ़िया प्रमुख पहल है हमार महिला मनला आगे आए बर, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। एकर का है ना कि मुख्य उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में हमार जो महिला मन हमें ओमन कर जो है भागीदारी बढ़ाना और उनकर आय में मतलब कमाई में हमें लगातार वृद्धि करना हवे। हमने देखती कि खेती किसानी में बहुत ज़्यादा जो है सहायता करते हैं हमार महिला मन, बाकी काहे कि ओमन ला उतना हमन श्रेय नहीं दी तो ये बात गलत है। हमन ला उनके कर जो है श्रेय देना चाहिए कि भाई जितना वो काम बूता वो करते हैं वो हिसाब कर। तो का है हमार भारत में कृषि कार्य जो खेती में कार्य बल कथी जिला मन की ताकत कर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है महिला मन हमें। अभी देखिए कि आर्थिक और सामाजिक जो बदलाव के कारण ना खेती में जो है हमर महिला मन कर भूमिका मात्र जो है मजदूरी तक ही नहीं सीमित हवे, बल्कि ओमन अब अपन खुद से निर्णय लेते हैं और कहा कि उद्यमी के रूप में उभरता है, और यही जो है भागीदारी ला समर्थन दे पर सरकार जो है बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। पहचान और सशक्तिकरण कहब ना, ये योजना के अंतर्गत ग्रामीण जो महिला हमें हमारे गांव घर कर महिला हमें वो मतलब किसान के रूप में मान्यता देता है, और वो मतलब स्थायी कृषि पद्धति जैसे कि हम जैविक खेती कथी ना ओकर में प्रशिक्षित कराता है, मतलब कहब ट्रेनिंग देता है बहुत ही देखिए बढ़िया हुए। कहब कृषि संसाधन और ज्ञान एकर तहत जो है कृषि सखी होगिन, पशु सखी होगिन, मत्स्य सखी होगिन, मत्स्य मतलब मछली, तो एक मजबूत नेटवर्क तैयार करल जाता है जो महिला मल्ला जो है स्थानीय स्तर पर तकनीकी और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। बहुत ही देखिए कि महिला मन पर लगातार प्रयास करता है, कहे कि महिला मन जो है हर चीज़ में सहयोग करते हैं, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो कहे ना उनके भी और आगे बढ़ाल जाए। हमर कहब ना कि भारत कर जो कृषि कार्य बल कर बात करें हैं मैं तो ओकर महिला मन कर हमर भागीदारी 42% से भी ज़्यादा हो चुकी से, सोची कितना बड़ा योगदान हवे। हमर महिला जो हैं अब खाली मजदूर नहीं रह गिन बल्कि स्वतंत्र किसान, उद्यमी और निर्णयकर्ता के रूप में उभरता है, और महिला मन कर यही महत्वपूर्ण भूमिका ला स्वीकार करते हुए देश कर पहला महिला किसान सशक्तिकरण नीति के तहत महिला मनला आधिकारिक तौर पर किसान कर दर्जा देकर ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी से। अब देखिए कि एक अंतर्गत में जैसे बता रहे हैं रघु टोरे मल्ला कृषि सखी, पशु सखी, वन सखी जैसे सामुदायिक जो है ना संसाधन एमन कर व्यक्ति मन कर मजबूत नेटवर्क तैयार करल गई से जो महिला मनला वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती, पशुपालन, मछली पालन में प्रशिक्षण देते हैं। वह अब कहब सतत कृषि कर बात हवे, यह ये प्रोजेक्ट जो है जैविक खेती, जल संरक्षण और मिट्टी कर जो है उर्वरता बढ़ाए जैसा पर्यावरण अनुकूल तकनीकी पे भी जोर देते हैं। एकर लक्ष्य खाली महिला के कौशल ला बढ़ाना ही नहीं है बल्कि उनकर शुद्ध जो आय है मतलब कमाई है वे उनमें सतत वृद्धि लगातार वृद्धि करना है, और परिवार मनला खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। देखब एक और योजना हवे कि नमो ड्रोन दीदी योजना, हमर जो गांव कर महिला बन हवे

ला कृषि में आधुनिक तकनीक से जुड़े बर, जैसे कि ड्रोन उड़ाए पर रख रखाव और डेटा विश्लेषण कर भी प्रशिक्षण देता है। ड्रोन मन तो देखा थी ना अभी का आधुनिक कृषि ऐसा हवे कि जो ड्रोन कर माध्यम से, ड्रोन मतलब वो छोटका जहाज कहली ओला हाथे से ऐसे रहे लोग कंट्रोल करे वाला रिमोट कंट्रोल, वही हिसाब से ओला उड़ाते हैं। वो कहे कि जैसे बहुत सारा काम आए वो बताएल कि कहाँ जग भाई खमला खेत वो जान डालना है, खाद डालना है, कहाँ जग कैसन खेती होता है। ड्रोन तकनीक जो है बहुत ही आधुनिक तकनीक हवे और एक इमें भी महिला मला प्रशिक्षित करल जाता है। होकर कहब कि ये हमर जो है ये योजना महिला मल्ला आगे आए बर बिल्कुल जो है उनकर मार्गला बढ़ाता है। हमन देखत ही ना, हमेशा देखती है कि महिला मन जो है हर काम बुता में, देखिए घर कर काम बुता ले तो कर बेच करते हैं जो है खाना पीना झाड़ू बहारू, ओकर अलावा भी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा हमार सहयोग करते हैं और ओकर जो है ना उनमला जितना उनमला मिलना चाहिए श्रेय वो उतना हम नहीं दे पाई। तो यही बार जो है ना ये महिला सशक्तिकरण जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कर शुरुआत करल गई से और बहुत ही बढ़िया हवे। हमला बिल्कुल देना चाहिए, उनके श्रेय देना चाहिए, उनके आगे आए बढ़ मदद करना चाहिए। कहीं भी प्रशिक्षण जैसे मिलता है, ट्रेनिंग उन लोग के मिलता है तो ट्रेनिंग में भी हम उनके भेजना चाहिए ताकि आए वाला समय में जो है ना हमार जो महिला हैं अभी तो भाई कंधा से कंधा मिला के तो चलते छवें, बाकी का है कि अकेले जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हो के खेती किसानी करें। देखा थी पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर क्षेत्र में जो महिला मन तो आगे है ही है, तो अब किसानी खेती किसानी कर भी क्षेत्र में बहुत आगे आई और नवा नवा तकनीक ला भी सीखी, नवा नवा तकनीक कर खेती करी और साथ में कहब कि अपन तो घर कर तो भाई देखी आयला बढ़ावे करी, संगे संग अपन गांव घर कर भी विकास करी, अपन नावला रोशन करी। गोट बात देखी कार्यक्रम में हम करतेच रहब, बाकी मैं कहूँ कि एक ठन सुघर अकन गीत हो जाए, थकल विदाल कहे कि रौरे मन भी आए हो तो गुड बात तो हो ही, बाकी मनोरंजन भी जरूरी हवे। सुनल जाए केदार यादव और उनकर संगता कर गाल ए गीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ भाई, देखिए संदेश ला सुनें और एक पहले बड़ा सुगरकन गीत सुनें। केदार यादव और उनकर संगता कर गाल रहिस। देखिए पानी कर बचत करना बहुत ज़्यादा जरूरी हवे, ये बात ला सब कोई जानत हैं और जान के भी कभी कभी अनजान बन जाते हैं। कैसे कि पानी में अनभनिया कभी कभी देखब ना, शहर बाट तो कभी कभी नल हर अपने आप खुलल रहे तो लग बंद नहीं करत रहते हैं। अभी गर्मी कर समय अभी देखी, अभी तो बरखा कर शुरुआत हो चुकी से गर्म कर घनी हमन देखी कि हमारे देश में कहों कहों जब पानी कर इतना ज़्यादा किल्लत हवे कि बड़ा दुनिया दुनिया से लाना पड़त है। भाई अभी कर ही स्थिति देखी ना, पानी

घिसाए के पीना पड़ता है बढ़िया शुद्ध कब ना कि जल, तो पानी जो है पानी है तो जिंदगानी हवे। जो हमारे ये बरखा कर जल है ना, एला हमन ला संचय करना जरूरी है। वर्षा जल संचयन खाली पानी बचाए कर ही ये प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे जो आए वाला पीढ़ी हमें ना ओमन बर कह कि ये सतत जल सुरक्षा है और पर्यावरण संतुलन कर मूल आधार हवे। देखब कि हमन कभी कभी जब कुड़वा थी बोरिंग वोरिंग कर आतरा थी, कभी कभी इतना तरी कहों कहों क्षेत्र हर चलेगी से ना कि पानी हर निकलना मुश्किल होगी से। तो भाई कहा है कि घटता जो जल स्तर है ना, भू जल स्तर, एला भी हमला सुधारना है। जल संकट से मुक्ति पाकर जो है सबसे प्रभावी विकल्प हवे पानी कर संचयन करना। देखब कि पक्का सड़क के कारण जो है ना बारिश कर जो पानी है खाली व्यर्थ जो है बह के ही निकल जाए। बरखा कर जल जो है जमीन में सोखे से का है कुआं और बोरवेल जिसे कहते रहे हैं ओकर जल स्तर हर भी बढ़ेल। हमन कहब कि जो जल संकट से मुक्ति, गर्मी में देख बहुत ज़्यादा पानी का जो किल्लत होगी होत होल, इला हमन ला का है कि कम करना है जितना ज़्यादा हो सके। मिट्टी कर कटाव जो है बाढ़ नियंत्रण भी एक से होल का है तो ध्यान करना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहब ना कि जैसे भाई अगर छत हवे तो छत में भी कहे कि पानी कर जो है वर्षा कर जल कर संचयन कर सकत ही। छत कर पाइप कर जरिए बारिश के पानी ला साफ करके जो है अंडरग्राउंड टैंक या रिचार्ज पीट कर थी ओकर में इकट्ठा करते हैं। खेत में जैसे मेड़ बंदी कर ली, कृषि क्षेत्र हमारे खेती के क्षेत्र में छोटा छोटा तलवा हमें या मेड़ है चेक डैम बना के पानी ला जो है खेत में रोकल जाए, जो हमार जो है किसान भाई मन भर सिंचाई में बहुत बड़ा मददगार हल। उसने कहा कि सोखता गड्ढा भी बना सकत थी, खुला स्थान पर गड्ढा बना कर रूप में कहे कि कंकड़ पत्थर से भर देते ना तो बारिश कर पानी जो है प्राकृतिक रूप से जो है जमीन के तरीहर जाए। तो हम वैसे कहब कि सरकारी भी योजना हवे छत्तीसगढ़ जैसा हमारे यहाँ क्षेत्र में बरखा जल कर संरक्षण लाभ बढ़ावा दे बर विभिन्न सरकारी नीति जैसे कैच द रेन, रेन मतलब बरखा होल बारिश, वो भी जो है अभियान सक्रिय रूप से काम करता है। तो हमला बहुत ज़्यादा जरूरी हवे कि भाई हमन कोशिश करी अपन तरफ से प्रयास करी, एक ले दू या दू ले चार, चार ले हजार, यही कस तो कहब ना कि पूरा जब सब जागरूक हुई तो हमन जो है पर्यावरण ला भी संरक्षित कर सकत ही, जल कर स्तर ला भी हमन कुछ हद तक जो है बचा सकत ही, ऊपरे लान सकत ही। तो ध्यान रखना है हमला। अब देखिए कि हमारे यहाँ खेती खेती रोड़े मन करती ना जैसे छिटवा कर देती या रोपा कर देती, तो एमएन में से बढ़िया कौन हवे एक बारे में कुछ चटी गोट बात करब। धान की खेती में कहे कि दोनों कर अपन अपन फायदा हवे, पानी समय और अपन मेहनत कर बचाए बर सीधा बुआई जो कर देती ना हमन एक में का है कि फायदा तो हवे 20-25% पानी कर भी बचत होल, बढ़िया पैदावार होल, कम खरपतवार और पौधा कर बेहतर विकास होल। लेकिन ये जो है अगर हमारा बढ़िया पैदावार लेना है, कम खरपतवार और पौधा कर बेहतर विकास करना है, तो हमार रोपाई विधि जो है ना आज भी सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानल जाए। सीधा बुआई जो ला हमन कथी कि डायरेक्ट सीडेड बोनी तो कर में कहे कि देखिए एक तो पानी कर बचत हुई, रोपाई कर जो खर्च बचेल, फसल जो है कटी जल्दी पकेल और अगला फसल के लिए खेत हर जल्दी खाली होल। नुकसान का हवे कि एकर में खरपतवार कर समस्या जो है देखे में आयल और का है कि बिना रुके बरखा होए पे बीजला जो है नुकसान होए कर भी संभावना रहल। अब हमार जो धान कर जो पारंपरिक बुआई पहले जो है मन जैसे नर्सरी थरहा करती और फिर ओला फिर पानी मैं खेत में हमन रोपाई करती, एक फायदा का है खेत में पानी भरा रहे से खरपतवार जो है बहुत कम होल, पौधा कर जड़ जो है बढ़िया तरी धरेल और पैदावार जो है सामान्यतः जो है ज़्यादा और निश्चित रूप से होल। अब देखिए नुकसान एक में का हो सकल कि पानी बहुत ज़्यादा जिससे पानी हवे पानी कर ज़्यादा आवश्यकता होल और श्रमिक या मजदूर मन कर जो है जरूरत होल जेकर से का है कि लागत जो है बढ़ेल। तो सब कर देखिए कि अपन अपन महत्व हवे खेती में, दोनों कर महत्व हवे।

पारंपरिक विधि कर, रोपाई कर भी और छिटवा कर भी। तो इस समय कर हिसाब से देखें और खेती करी। एक मैं कार्यक्रम को शुरुआत में कह रहे हैं कि किसान भाई से मुलाकात करवाऊँ राउर मल्ला, तो मिलल जाए हमार किसान भाई हमें राजेश यादव गोपालपुर कर रहुया। कैसे कैसे खेती पाती करता है रौरे मन भी सुनी।

0: आज मैं आए हूँ अंबिकापुर से विश्रामपुर सूरजपुर रोड में जात घनी सिलफिली से, यही 4-5 किलोमीटर दूर पड़ेल गोपालपुर गांव। तो देखें एक ठन किसान भाई खेती करता है, तो इनकर समय कहन बोर्ड बात करल जाए। का नाम है तुम्हार?
1: राजेश यादव।
0: राजेश यादव जी,
2: बहुत बहुत स्वागत है तुम्हार।
0: अभी तो देखा थी कटिक पानी बूंद भी कमी आई से, तो जुताई उताई होगी इसका?
1: हाँ, जुताई उताई होगी से, अभी कुछ बुनाई हुई से, अभी कुछ बांचले है।
0: थरा हो गई से?
1: थरा लगा दे।
0: अच्छा, कितना खेत तबाही है तुम्हार? देख
1: हाँ, 3-4 एकड़ है।
0: 4 एकड़ खेती है। तो अजय जो खरीफ में का लगाई है उसमें?
1: वही धान कुछ बुन छिटुआ, कुछ रोपा, दो प्रकार के धान।
0: तो का धान लगा था?
1: हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड।
0: अच्छा, हाइब्रिड ही लगा था, है ना? और पैदावार तो सब सोसाइटी में देते हैं?
1: हाँ, सब सोसाइटी में दे देते हैं।
0: तो कहाँ जग पड़े तुम्हारे सोसाइटी?
1: वही सिलफिली।
0: सिलफिली,
1: आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिलफिली।
0: अच्छा, और कहीं बारी उरी में लगा था कि नहीं खरीफ में?
1: बारी में वही हल्दी, अदरक, मकई, टमाटर, ढोड़का, कोहड़ा, यही सब लगा थी।
0: अच्छा,
1: बराबर बढ़िया हो जाए। हाँ, बेचो बर हो जाए।
0: हाँ, बढ़िया बात है। तो ये क्षेत्र में मैं देखा हूँ पहाड़, पहाड़ कस दिखा थे। पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है?
1: पिलखा पहाड़ है।
0: पिलखा मतलब पिलखा कर धरिए है, राउर कर गांव है ना,
1: पिलखा के नजदीके है।
0: तो हमन सुने कि एक अति भालू उलू भी आ जाए?
1: भालू आते हैं।
0: हाँ,
1: भालू आते हैं।
0: तो राउर मतलब कोई परेशानी?
1: अब जैसे रात को निकलेंगे तो पाएगा तो रगड़िए देगा वो।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए
0: राती गाँव कति ढुक जाते हैं?
1: गाँव में पूरा घूमते हैं।
0: हाँ,
1: भाई वही कुछ कुछ रहता है तो नुकसान भी कर जाते हैं।
0: कुछ कुछ है, मतलब काबर आते हैं? जैसे का पसंद रह लो, मतलब
1: मन के मूंगफली ज्यादा पसंद है, मक्का का भुट्टा ज्यादा पसंद है।
0: हाँ,
1: और गन्ना तो डर के मारे कोई लगावे नहीं करता है।
0: अच्छा,
1: नहीं तो गन्ना पूरा चूस जाते हैं और नुकसान भी करते हैं, है ना?
0: हाँ, तो ज्यादातर मतलब जब फसल रहे मूंगफली ये सब वही घने आते हैं ना। तो अभी जैसे रौरमल्ला रहती है, डर नहीं लगे?
1: नहीं, तो रात को निकलना ही नहीं है ना, 10-11 बजे अपना सो गया, सवेरे उठे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें कोई डर ही नहीं है।
0: अच्छा, ये बताते हैं कितना हो जाल उत्पादन राउर कर धान का?
1: जितना लोन ले रही ना वो सब कट जाए।
0: करीब करीब सोसाइटी में कितना बेच देता?
1: अरे भाई 80 क्विंटल, कभी 82 क्विंटल जैसे बना रहता है वो।
0: और बाकी तो भाई जो साग सब्जी अदरक उदरक में कमाते हैं?
1: हाँ, उसमें तो कमाई लेते हैं।
0: खतवाई में बोर है?
1: हाँ, ट्यूबवेल है ना।
0: अच्छा,
1: हाँ ट्यूबवेल है।
0: हाँ,
1: उससे सिंचाई उचाई कर लेते हैं।
0: जरूरी भी है काहे कि ट्यूबवेल
1: है, कि पानी का मौसम देख ही रहे हैं।
0: हाँ,
1: कभी गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है।
0: हाँ, तो उस समय काम आए?
1: हाँ, उस समय काम आ जाता है, जिलाने भर का। हाँ, भाई जीते रहे।
0: तो राहुल कर किसान क्रेडिट कार्ड बनी से कि नहीं?
1: बना है ना,
0: बनी से।
1: हाँ,
0: का का फायदा लेती तो में?
1: वो खाद ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खाद लोन, बस यही दो दो चीज मिल भी करता है।
0: अच्छा, जिसे फसल बीमा कर बारे में सुने हैं?
1: हाँ, नहीं वो तो बीमा बीमा है ना,
0: फसल कर बीमा करवाती है ना। कहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी अपने अपनों मन बीमा भी करते हैं।
1: बीमा कर देते हैं,
0: है ना,
1: उसका पैसा भी कटता है।
0: हाँ,
1: बीमा
0: कटता। हाँ, वो खरीफ में जो है ना वो 2% ओकर प्रीमियम रहल, जरूर से जरूर कराना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे माटी कर परीक्षण कराते हैं लोग, माटी कर स्वास्थ्य कार्ड बनाता है, मृदा स्वास्थ्य पत्रक कार्ड, सुने ही?
1: नहीं, अभी तो जानकारी नहीं है हमर, कभी वो सब का अभी चर्चा नहीं है।
0: नहीं, बाकी का है कि राहुल से बात कर रहा हूँ। राहुल, एक अति अंबिकापुर में भी है स्वास्थ्य कार्ड, माटी कर जो है ना, खेतवाही कर माटी ला लान के वहाँ देना पड़ेल। वहाँ बता देते हैं कि कौन कौन सा पोषक तत्व तो है, कौन सा बेसी है, कौन सा कमी है, वो हिसाब कर खेती करते ना, तो कभो घाटा नहीं हो।
1: घाटा नहीं हो।
0: हाँ, ऐसे तो का है कि जो रौरे मन का खाद डालते हैं?
1: वही इफ्को, यूरिया।

0: या गोबर
1: यही सब मिला के डालते हैं।
2: अच्छा, तो जैसे हम देखें कि रासायनिक खाद का उपयोग करे से माटी कर जो है उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता है ना?
1: नहीं, कम तो होता है, लेकिन अब क्या करिएगा, नहीं डालिएगा खाद तो
2: गोबर खाद डाल के संतुलन करल जाए।
1: गोबर खाद डाल के संतुलित करते हैं ताकि उसका उर्वरक क्षमता बनी रहे।
2: बने रहे, ठीक बोलो थी। तो कितना परिवार होती रहा? उमन
1: हम 6-7 जन हैं।
2: 6-7 मतलब कैसे कैसे?
1: 7 जने हैं।
2: कौन कौन होता कैसे?
1: अरे हम लोग चार जने हैं।
2: चार जन मतलब देखा, एक तो तू है घर और पत्नी होगी,
1: दो लड़के हैं,
2: दो लड़का हैं,
1: बहुरिया हैं।
2: अच्छा,
1: दो नाती हैं।
2: अच्छा, लड़का छे वहाँ मतलब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
1: पढ़ते हैं ना? नहीं, वो लड़के तो पढ़ लिए हैं।
2: अच्छा, वही कहें
1: पढ़ लिए,
2: पढ़ी ना है? कितना कितना पढ़ी तो?
1: अरे बीए तक पढ़ लिए।
2: वाह, तो देखिए सुगर बात है, जागरूक किसान है, बच्चा मतलब भी पढ़ाई और बच्चा मन खेती पाती में करते हैं सहयोग की नहीं करते?
1: हाथ हाथ बटाते हैं ना,
2: बटाते हैं। और कर घर मतलब खुशहाल है ना?
1: हाँ, खुशहाल है, अपना जी खा रहे हैं बढ़िया।
2: पंप लगवाए

0: लड़के तो पढ़ लिए हैं।
1: अच्छा वही कहें पढ़ी ना लड़का कितना कितना पढ़ी तो
0: अरे बीए तक पढ़ लिए।
1: वाह तो देखिए सुगर बात है जागरूक किसान है बच्चा मन भी पढ़ाई और बच्चा मन खेती पाती में करते हैं सहयोग की नहीं करते
0: हाथ हाथ बटाते हैं ना
1: बटाते हैं और कर घर मतलब खुशहाल है ना।
0: हाँ खुशहाल है अपना जी खा रहे हैं बढ़िया।
1: पंप लगवाए तो अपने से लगाए कि सरकारी सहायता कहीं
0: नहीं सरकारी सहायता नहीं अपने से खुद से लगवाए।
1: अच्छा सरकारी सहायता जैसे पंचायत उंचायत में कहीं आए तो राउर मल्ला बताते हैं।
0: हाँ बताते हैं
1: तो ये गांव में ज़्यादातर धाने लगाते हैं जारी में
0: ज़्यादातर धान लगाते हैं।
1: अच्छा तो और वैसे तो हम देखे ही सिलपिली कतीले हमारे अंबिकापुर में ढेरे साग सब्जी मनाते हैं।
0: हाँ नहीं उधर जो बंगाली लोग हैं वो हाँ। पूरा साग सब्जी ज़्यादातर लगाते हैं।
1: हाँ
0: वो तो धान वान नहीं लगाते हैं बहुत कम लगाते हैं।
1: हाँ
0: लगाने के लिए लगाते हैं
1: ये बताते हैं जैसे टपक सिंचाई पद्धति है ना दौरे जाना थी ना
0: हाँ।
1: लगवाए रहते हैं और एगो स्प्रिंकलर
0: हाँ।
1: पद्धति
0: नहीं
1: वो कर कती अच्छे विचार नहीं करे ही
0: नहीं अभी विचार नहीं किए हैं कहे कि उसमें लागत थोड़ा ज्यादा लगेगा ना।
1: हाँ लागत तो कटिंग देखी एक दफे लगेल बखी का है ना कि गवर्नमेंट करो में शासकीय सहायता भी अनुदान हवे छूट हवे और एक बार जिसे लगाए दे ना तो में पानी हर अनभनिया नहीं जाही खाद उद कर जो है दवाई ववाई देती सब कर सुविधा है उसमें।
0: हाँ तो, देखेंगे भविष्य में
1: हाँ
0: लाइक हो जाएंगे तो लगाएंगे उसका उपयोग करेंगे है ना।
1: बिल्कुल विचार करना चाहिए कहे कि देखी जो साग सब्जी ये सब कहती ना जो बंगाली महोदय मन लगाई है वो मन ज्यादातर देखा कि टपक हाँ, सिंचाई वगैरह
0: टपक सिंचाई का ज्यादा उपयोग करते हैं लोग।
1: हाँ एकर से फायदा है कि कहा है कि कल के दिन पानी देखा थी ना दिनों दिन तरी हो जाता है
0: तरी होता जा रहा है
1: कोड़े में भी नहीं निकले पानी तो हमन लगा है कि ये समय पानी का बचत करे का जरूरत है। देखी ना आज पानी ले हमन बेसाय के पिए थी 10-10 रुपया 15-15 रुपये में बोतल भेटा आता है नहीं देखा था।
0: हाँ
1: तो आए वाला जो समय है ना वो पानी का जो किल्लत जिन्हों एक बार हमन ला भी प्रयास
0: करना चाहिए
1: करना पड़ी। देखी बढ़िया तो खेती पाती करत ही रहे का चीज से जोताई करें तो
0: अभी तो ट्रैक्टर से लगाए ट्रैक्टर से जोतवा के मैंने बिहन डाल दिए हैं।
1: अच्छा
0: बिहन भी एक बीता का हो ही गया है अब अगले हफ्ता से वही चालू हो जाएगा।
1: अच्छा देखिए हाँ कहो कहो तो जे मैं देखा था कि थरहा मन नहीं करी ना कहूँ बाकी कहा कि और बूंद भी डाल रही है ना बढ़िया बात हवे और घर में सब लोग तो अच्छा है राउर कर घर ला मैं देखा था पक्का कर घर भी बन गई से तो खेती पाती से ही सुविधा है
0: खेती पाती के खेती बाड़ी से है
1: खेती बाड़ी है और सब मेहनत करते हैं घर का है ना
0: सब मेहनत करते हैं।
1: हाँ तो देखिए कि हमारे किसान भाई अपन आय ला कैसे बढ़ाएं इला का कहा दो शब्द बताइए आखिरी में
0: बस समय पर खेती करें आवश्यक खाद डालें और पानी का व्यवस्था करें तब जा करके किसान का विकास होगा।
1: राजेश यादव जी राहुल से बड़ा सुगर गोट बात हुई राहुल बहुत बहुत

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई, ये संदेश ला सुने और एकर पहले किसान भाई से मुलाकात भी करें। बढ़िया खेती कराता है, लाभ लेता है, जागरूक किसान हुए। देखिए, जागरूकता कर बात हुई ना, तो हमला जो है कभी भी फसल कर हमला बीमा कराना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। काहे कि देखिए, आए प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक संकट ला कोई नहीं जाने कि कब काकस हो जाही, कि कब हो सूखा पड़ किस, कभी बाढ़ आए किस, कहूँ कारा गिर किस, कि कहूँ कीट पतंगा मन कर हमला हो किस। तो काहे एकर से हमला जो है बहुत मजबूत सुरक्षा कवच

प्रदान करेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कहब कि अभी खरीफ में कहीं लगाब ना तो कर कुल बीमा जो राशि हवे बीमा राशि कर 2% जो है हमला प्रीमियम देना पड़ेल। तो बिल्कुल लगाना चाहिए हमला फसल बीमा योजना कर हमला फायदा लेना चाहिए। और देखिए एक बार कहीं वो नहीं रहेल कि ज़्यादा कि आवेदन पर का है आधार कार्ड देना पड़ी बैंक कर पासबुक देना पड़ेल और खेती कर जमीन कर दस्तावेज जैसे विवरण खसरा मल्ला देना पड़ेल। तो आवेदन करके और हमेशा फसल कर जो है मूल्य कर जो है ना 2% अभी और रबी में कहब 1.5% जो है प्रीमियम देना पड़ेल। तो बीमा कराना चाहिए भाई आए वाला संकट जो है कोला कोई नहीं जाने तो कर से हमला छुटकारा मिलल। देखब कुछ पोषक अनाज कर बात करूँ मैं। पोषक अनाज तो रो मन जानत थी पोषक अनाज हमार कहब श्री अन्न कोदो कुटकी सामा रागी ज्वार बाजरा इमन इमें शामिल हमें ये पोषक एयर वाला काहे कहल जाल कि एक में देखा फाइबर और प्रोटीन गेहूं और चावल कर तुलना में अधिक फाइबर अधिक प्रोटीन और खनिज जैसे कैल्शियम आयरन जिंक एकर में हमला भेटायल। कहब कि कुछ बीमारी से भी बचाव होल जैसे कि आजकल तो देखब नवा नवा बीमारी मधुमेह शुगर कुछ साल से हमन देखे में आती हमार पुरखा मन कबो एक बीमारी मन नहीं जानिन काबर कि मन ऐसा जांगर चलाए मेहनत करें और यही कस खाएं। जब हरित क्रांति का पहले जो है लघु धान जो मोटका धान का थी वो लग खाएं और बढ़िया मेहनत करें तो वो मतलब बीमारी वो तक नहीं आए। अभी तो इतना चिकित्सा सुविधा होए के बाद भी आदमी बीमार हो जाता है वो कहीं मन 90 बरस 80-100 बरस तक जी जाएं पहले के। तो एक कारण यही रही कि ये एकस जो है पौष्टिक जो है आहार लेते रहें और बढ़िया अपन जांगरला चलाते रहें मेहनत करना भी जरूरी है। कहब कि एकर से ये श्रीयन से हृदय रोग पाचन संबंधी समस्या भी दूर रखे में मदद करेल। और एक बात यह है कि देखिए एकदम कम लागत में खेती है इवन कहे ना कि ये जो अनाज हमें सूखा के प्रति जो है ना बिल्कुल सहिष्णु होल और कम पानी लागेल कम खाद लागेल अरे डाँड में बंजर भूमि में भी जो है हो जाएल। और तो है किसान भाई ला बिल्कुल लाभे लाभ है। अभी जो है लघु धाने के तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है आता है और एकर सेवन कराता है कहे कि एकर फायदा ला जान गई है कि एकर से हमला फायदेज फायदा हुए उच्च पोषण जैसे कहे कि विटामिन खनिज एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में इमें भेटल और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेल। देखिए बात करल जाए आज कर मंडी भाव कर। मंडी भाव में आदि रहीस 6,100 रुपया प्रति क्विंटल, हरा मटर 4,300 रुपया प्रति क्विंटल, बंगाल चना 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, बाजरा 3,300 रुपया प्रति क्विंटल और सरसों 5,000 रुपया प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करल जाए देखिए कि बादल तो सब कति छाई से आज कर तापमान रहीस 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम रहीस 25 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब सवाल पूछे कर बेरा हो चली से हमन पूछे रहन बुध रोज पाछू बुध के कि खरीफ कर जो है बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय का हवे। तो एक जवाब हवे कि मानसून कर आए पर जून से जुलाई महीना में। आज कर हमार सवाल हवे कि रौरे मनला ये बताना है कि खरीफ फसल अभी जो रौर मन लगाब ना ओकर बीमा बर किसान मनला बीमा राशि कर कितना प्रतिशत प्रीमियम देना रहल। तो बिल्कुल रावरमन कर जो है जवाब जिनका जवाब आही अगले हफ्ता अगले बुध तक जिनका सही जवाब रही ओला हम अपन कार्यक्रम में शामिल करब। और देखी एकर जो पीछे जो बताए ना पाछू बुध कर तो कर जवाब जो है लिख भेजिन है हमारे जो है यहाँ से सोनबरसा से प्रीतम राम ओम प्रकाश खगेश्वर मंगला और उनकर संगतारे। तो इनके चिट्ठी लिखे बर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसने भाई अब कार्यक्रम ला सुनत रहें कार्यक्रम कर फायदा ले हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि देखिए अभी ये समय बरखा कर जो समय हवे ना तो

से जैसे बारिश होता है तो ओकर में खेतवाही में जैसे पानी भर जाए और खासकर जो है ना कीरी बिच्छी मन जो है ना सांप गोजर मन कर निकले करे जो है स्रोत हो जाए तो जरूर से जरूर ध्यान रखी कि जमीन में कोशिश करी कि ऊपरे खटिया में ना खटिया में सोते हैं ताकि ऊपर रहें और साफ सफाई कर ध्यान रखें। राती कभी भी जैसे अगर बाहर निकलना पड़ता है तो टॉर्च वॉर्च ला बढ़िया धरे रहें, काहे कि देखिए हर साल एकस घटना होल कि कोई सांप काट दें। हमर खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है अगल बगल सुविधा कम रहे, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कम कहूँ कहूँ उतना सुविधा नहीं रहे तो दूसर कति शहर बाट कति जल्दी भागना रहे ओकर में कहे कि देरी भी हो जाए। और एक बात का जरूर ध्यान करब कि ये जो क्या कहते हैं अंधविश्वास में बिल्कुल झीन पड़ब। कभी भी अगर एक घटना हो जाता है कहीं कुछ जैसे अगर सांप वाप काटे कर घटना हो जाता है तुरंत अस्पताल कति जाना है, वो झारा फूका का में बिल्कुल झीन रहिया, नहीं तो कहे कि मन से अपन जान से हाथ धो बैठल एकर सीधा इलाज है, कहे कि अस्पताल में ही ओकर इलाज हो सकेल। ये मन जो है झूठ मूठ कर झाड़ा फूका करते हैं ओकर में बिल्कुल मत पड़िया। कोनो भी बीमारी है वो झाड़ फूक से नहीं जाए, ये बात ला अपन दिमाग में बैठा ले। और कभी भी जैसे कोनो बीमारी कर बात हो तो झट ले अपने हिसाब का डॉक्टर नहीं बन जाना है, अपन डॉक्टर नहीं बनना है भाई, अपन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पास में हो तो में चाहे आने डॉक्टर पास जाए और अपन इलाज कराना हुए। हाँ तो देखिए गोट बात तो करे में तो रवरे मन से मजा आत रही, बाकी का है कि बेरा हो चली से विदा लेकर तो धर्म भैया यही जग विदा करी। राम राम।

अभी किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश लेकर आज मैं हूं हाजिर आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हिम्मत वाला से। गीतकार हैं इंदिवर और संगीत है बप्पी लाहड़ी का। और इस गीत को सुनाने के लिए सोशल मीडिया से फरमाइश भेजी है दानोरा बिटाली नांदुरा बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल मंगेश सचिन पाटिल, बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिवप्रसाद देवदास मोहित कुमार ओमिन उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना कुमारी अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास, अड़ारनाथ घाट से माखन वर्मा चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, अमगसी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर से मुनेश शालिनी रुचिका अनिका मनीष सुचिता चांदनी दीपांशु, ग्राम बन बघेरा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि।

रोशनी, बेबी ख्याति, ग्राम उरेटा, डोंडी लोहारा, बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी, अजय देव, डॉली, पूजा, मास्टर अलकबीर, सरलही सुकनाहा नेपाल से, अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी, ग्राम राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस्ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार राम, खिलावन सिंह पैकरा, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार और नसीम बेगम, चक 5 MD पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। तो आइए सुनते हैं फिल्म हिम्मत वाला का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, वन मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव और एस के पप्पी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, गोपी खिरिया भांडेर दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पॉल, हरिमोहन, अंजना पॉल, ज्योति बघेल और लक्ष्य बघेल, कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता, शशांक, पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से अनंत जैन, हंसित, प्रीति जैन। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म कर्ज का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इंस्टा फरमाइश का अगला गीत हमने लिया है फिल्म शान से आशा भोसले की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन का है और पसंद करते हैं बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल, उर्वर्षी। ग्राम पंचायत डुमरिया भटगांव सूरजपुर छत्तीसगढ़ से फुलेश्वरी, धर्मजीत, सुरेंद्र कुमार, आरती यादव, नितिन यादव, हेमाक्षी, महेंद्र कुमार, मोहरमनिया। ग्राम पंचायत परसा सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश राजवाड़े, यमिया आदिया, पार्थ राजवाड़े। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेल्डी से नानाजीलाम से मीनालाम से तेजस, हर्षिता। ग्राम दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई और उमा तिवारी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, उत्राणी केवट, कृष्णा और चंचल केवट। सनावद से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, एहन बाबू। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफिया, अनस, आयसा, आलिया, सदफ। सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, आदिया खान। बगबुड़िया पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से विनोद खट से। नईवाला जिला हमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। देवीगंज रोड से अंबिकापुर से हैं राजकुमार निवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता। आदर्श नगर पनोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, माइंडी, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म शान का ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं के फरमाइश पर। यह है मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, अल्पना कुमारी, मुन्नी चांदनी और नंदिनी कुमारी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मोरहेकर। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। मालवा रेडियो श्रोता संघ राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। नवाशहर पंजाब से आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, बेबी वामिका, डॉक्टर प्रियम और वाणी थांदी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम। आपके साथ हैं रवि आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक मोनू, उन्नति घनशानी, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और उनका पूरा परिवार। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मेफरा नवाज, बेबी चाहता और सादिया। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले, धोतेर जोड़ा। आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी। ग्राम चरौदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू और ज्योति ठाकुर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म याराना का ये गीत, जिसे लिखा है अनजान ने और संगीत है राजेश रोशन का।

राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष आशिक चौहान, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, ताज मंदिर लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब, छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़ी, वनीता गंगराड़ी, मोहम्मद हसनैन पवार, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तान्या नारंग,

एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबही तालुका सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्राजिक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश भोला कॉलोनी गरौड़ा करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी गुंजन साहिल और वाणी ग्राम खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन बारासा लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या बालाजी चौक से ओटी श्रीवास शेख आजाद पोपुरानी खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा सफेदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना चंचल खन्ना लाड़ो लवली खन्ना रजत खन्ना लव खन्ना कुश और उनका परिवार बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती राव बेलाबाई सिंह विकास सिंह ओम प्रकाश शुभम विश्वकर्मा और अरुण सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव रुस्तम हिमांशु अनुष्का ऐश्वर्या प्रीतम मनोज मिथिलेश यादव एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोत निखिल कांगड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूनाराम देवांगन कृष्णा देवांगन बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूलत नेहा जैन दीपक मयंक और चेतन नाहटा रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हिमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार की फरमाइश पर कार्यक्रम का अंतिम गीत आई सुनते हैं फिल्म कुर्बानी से नाजिया हसन की आवाज़ में गीतकार हैं दीवर और संगीत है बिद्दू का।

0: नाजिया हसन के गाये फिल्म कुर्बानी के इस गीत के साथ ही आज का इंस्टा फरमाइश बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा,

0: नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश,

0: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को

0: आमने सामने होंगे दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुरेश वाडकर को फिल्म सदबा में सुना। गीतिका था गुलजार ने और संगीत इलैया राजा का था। आइए अब सुनते हैं वर्मा मलिक का लिखा गीत उत्तम जगदीश की बनाई धुन पर मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है वारिस।

जसपाल सिंह के गाय फिल्म गीत गाता चल के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है

0: ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलिनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलिनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलिनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज़्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो स्टोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, July 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है,

0: वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी, तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना, वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफ़ी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ, सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफ़ी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
1: जी,
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज़। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी,
2: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
2: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न UP जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं,

0: चाहिए,
1: जी
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो 1 लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिए, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहाँ पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा जो प्रधानमंत्री

एक कृषि सिंचाई योजना है, उसमें वाटर शेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति

0: फार्मर है वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ बरसों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहाँ पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहाँ चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहाँ पे किसान आके ये सब चीज़ों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है, तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय भी डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले

0: होने वाला है तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में। आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है जी। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है, और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है, कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है, और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी, और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल

0: न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूं पद्मनाभ शर्मा। तो चलते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जख्म से। गीत का है आनंद बख्शी ने, संगीत एमएम क्रीम का है और इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, इंद्र बिहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और निशा अजीम, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनित और बाबू भाई, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद लखनलाल देवांगन, ग्राम तांगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह, साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमचिम, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीकेश साहू, कासिम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी इद्रिश, नूरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, डोंडी लोहारस से प्रभा जमोरिया, अनुश्री और पूजा डौली, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमिन और पथिक डोम। तो आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जख्म का ये गीत।

अलका याग्निक को आपने फिल्म जख्म में सुना। नेहरू चौक पैठड़ महाराष्ट्र से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा, सोनल जाधव, यहीं से हैं बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ और संगीता, पुरानी भिलाई 3 पदुम नगर चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद, शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से पेंटर बाबू, विजय सिंह मौपिया, कविता और यीशु बाबा, जेलरोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, कौशल गोस्वामी, रिंकी गोस्वामी, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, आजाद नगर।

अक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां, बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, ग्राम लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। आप सब सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत अनु मलिक की बनाई धुन पर सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पलटन।

सोनू निगम को अपने फिल्म पलटन में सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म अनकही से। गीत लिखा है समीर ने, संगीत प्रीतम का है और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें मेल किया है ग्राम जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, बेल्डी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक और प्राची आपके साथ हैं, तनु करमरकर, राजकोट गुजरात से मेल किया है रश्मि झरना भगत भरत कुमार ने, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब न्यू मार्केट पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिया खातून और गुड़िया खातून, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और राज एस डी अंसारी, जालंधर से संदीप कौर और मनदीप कौर, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय, ग्राम चरोदा बारनवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू, ज्योति ठाकुर, कंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा अभय, पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्ला अंसारी, असमान अंसारी और शबनम बानू, जेल रोड बक्सर से उनके बहुत सारे साथी, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, जेल रोड झांसी छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप और कशिश, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नहावकर, नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर, निर्मला और विशाल।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं साधना सरगम और उदित नारायण का गाया फिल्म मदहोशी का ये दो गाना, जिसे लिखा है शकील आजमी ने, संगीत है रूपमा राठौड़ का और ईमेल पर पसंद किया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर और कुशल शाह, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी दीवाना, आकुट से विनायक बेंडे, श्रीमति मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिगेस्ट्रो, रोजी डिगेस्ट्रो, पर्ल और विलिस, ग्राम कुमार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले पुणे से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अंबिका और विशाखा, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनित कुमार और सोनम वर्मा, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज, हसन नवाज, शरीफ नवाज, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां और जीनत जहां, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, रोशाद बेबी आलिया, एन बाबू, दतरंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा।

उदित नारायण और साधना सरगम के गाए फिल्म मदहोशी के इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ शर्मा ने। और आइए श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आपके लिए हम लायक राय हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। तो चलते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है। फिल्म मेरे हुजूर से इस गीत को सुनना चाहते हैं। बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। ग्राम द्वारिका नगर लटोरी सूरजपुर से इंद्रसा यादव, संतोष, सौरभ, विजय, देवंत, संजय, चंद्रभान राजवाड़े, छोटी खुशबू, ज्योति। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव, गरिमा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना और विपुल कांबड़े। ग्राम फ्रांसिस से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। ग्राम पंचायत घोसरा मोहल्ला बेलपारा सिरमिना कोरवा छत्तीसगढ़ से शिव कुमार, राम कुमार, बांसी, मनोज कुमार, शिव प्रसाद, अनिता, मानमती, गीता, वेदमती, दिलमतिया, संपत्तिया और अकलिया। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म मेरे हुजूर का ये गीत।

मोहम्मद रफी को आपने फिल्म मेरे हुजूर में सुना। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, तिवर्ता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया, जागेंद्र कुमार, तिवर्ता से ही गजेंद्र प्रताप, सुरेंद्र कुमार, मोहन सिंह, मनमोहन सिंह मरकाम, अलगीडांड कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, फूलजी यादव, कोरबा छत्तीसगढ़ से शिवकुमार बिंझवार, राम कुमार बांसी, मनोज कुमार, शिवप्रसाद, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश नेवानी, पप्पू जयसवाल, सुमैया राजवाड़े, हेमलता प्रजापति, पूजा सीता, प्रभा सविता, सागर आयुषी, कन्यापुर से रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना, ग्राम करजी कोरिया से रेनू, आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर को आइए सुनते हैं फिल्म परंपरा से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिवहरी का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अभिलाषा से। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का है और पसंद करते हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वाड़ोदे, बाबा साहेब और चंद्रप्रभा, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड, गरीब नवाज कॉलोनी, इंदौर।

प्रदेश से पूजा बबीता, शोभा रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और नारायण भाई खर्चे, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा।

कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल दिवांगन, सुमति प्रभा, सिमगा छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरव शर्मा, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंह रोल, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष

गव्या जयपाल यादव, आप सबकी फरमाइश पर मुकेश को आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का।

ग्राम अनुजनगर लटोरी सूरजपुर से चंद्रभान राजवाड़े, पीवर प्रसाद, देवन प्रसाद, कांता प्रसाद पीताम्बर, इंद्र साय यादव। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक। मंडार सिवनी कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष शुक्रधारी, श्रीमती कविता, मुस्कान, अनुष्का। शालर पहलगांव कश्मीर से पीरजादा महजुद्दीन, कैसरुद्दीन और नजमुद्दीन। बिलानगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, दीपक, प्रमिला और ज्योति श्याम कुमार। बेल्डी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक और तनु। ग्राम पगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, मिलिंद नेताम, दोबेश नेताम, रंजनी, अंबिका और योगिता। गुंजाला बीर महाराष्ट्र से नारायण देव घुगे, नानीबाई, सुनंदा, महेश, निर्मला और भगवान की फरमाइश पर आशा भोसले को आइए सुनते हैं फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ मैं। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है उपी नैयर का।

0: आशा भोसले के गाए फिल्म फिर वही दिल लाया हूं के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2000

26 को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, and Keralam Chief Minister V.D. Sathisan. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. 9th seed Linda Noskova booked her place in her maiden Wimbledon semi-final with a 6-3, 7-5 win over Belgium's Elise Martins. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अपनी कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में सुबह 5:51 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।